नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर हमारे रेडियो साथी के साथ में। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सह, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर ले। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत में राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करा हूं हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हासिल थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आपते की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरते बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थई शके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आपते की घणा कानी बातें थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8।

0: मेरी आप सबनों घने मान स्वागत करो हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जिम के भाई बहनों गीत के पहले आपने विषय बताड़ियों तो कि आज आप बातचीत करवा वा रहा हो कि हर ते आदिवासी संस्कृति बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नु एक समाधान थई सके। तो भाई बहनों अणा विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आप कार्यक्रम थकी जुड़ी रहे मनीष जी सर। तो सब तक पहले अपने हमरी लड़ना की बातें मोरे कर आपकी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि आदिवासी संस्कृति जो है वो किस तरीके से वनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि वनों के संरक्षण को लेकर हर कोई प्रयास कर रहा है और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से, हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है। तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं। वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है,
0: बिल्कुल,
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं। पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है।
0: बिल्कुल।
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयाँ और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यहीं सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि

0: पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हो।
1: जी सर।
0: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं। पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: वन संरक्षण की योजनाओं में इन पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। यहीं सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और

0: जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
1: जी,
0: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है, जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती है। तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं। अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहाँ पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहाँ वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहाँ नजर आने लगी है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यहीं सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियाँ हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है?
0: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो

0: रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता
1: जी जी,
0: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें। इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी

0: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
1: जी जी।
0: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડેતા કહત ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હામરી લાઈક ઓર ગીતને મોરે પડો સૂટા।

0: जागृति बुन, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक निमिषक के साथ में।
1: जी हाँ।
2: कशिश और रीना, आज हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में पानी पीने की आदत कैसे डालें।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि पानी जीवन का आधार है।
1: जी,
2: जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है वैसे ही पानी शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
2: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि विशेष रूप से बच्चों के लिए पानी का पर्याप्त सेवन बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि उनका शरीर विकास की अवस्था में होता है। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कशिश कि बच्चे पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक, जूस और अलग अलग जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों में पानी पीने की अच्छी आदत डालना माता पिता और समाज दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है।
1: जी हाँ, अंजलि जी आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले हम इस गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
2: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है
1: जी,
0: कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि पानी का महत्व बच्चों के लिए बहुत अधिक होता है अंजलि जी।
1: जी,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के शरीर का लगभग कई प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है साथियों
1: जी,
0: और पाचन को सुधारता है
1: जी,
0: जिससे विषैले

0: पदार्थों को बाहर निकालना आसान हो जाता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। यह हम देख सकते हैं कि पानी की कमी से बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
1: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें पानी पीने के महत्व के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में यह हमारी सहायता करता है। पानी शरीर के अंगों के सही विकास में मदद करता है हमारी। यह मांसपेशियां और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। जैसे कि पानी भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर ये हम जाने कि पानी दिमाग विकास में हमारी सहायता करता है, अंजलि जी हम कह सकते हैं कि पानी की कमी से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां आती है, पर्याप्त पानी पीने से बच्चों की एकाग्रता भी इससे बढ़ती है।
0: बिल्कुल, हम देखते हैं रीना, बच्चों में पानी पीने की आदत क्यों नहीं बन पाती है, अगर इस बात को जाने तो कहते हैं स्वाद की कमी।
1: जी,
0: पानी का कोई खास स्वाद नहीं होता, इसलिए बच्चे इसे कम पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल,
0: बहुत सी बार मीठे पेय पदार्थों की ओर आकर्षण, यानी कि कोल्ड ड्रिंक और पैकेट जूस बच्चों को अधिक लुभाते हैं।
2: जी हाँ,
0: अगर शुरू से ही आदत नहीं डाली जाती है तो बच्चे पानी पीने से बचते हैं। श्रोता साथियों, यदि घर के बड़े खुद पानी कम पीते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं।
2: बिल्कुल,
0: बताएंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद उदाहरण बनना है।
1: जी,
0: बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। यदि श्रोता साथियों आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे इसे अपनाएगा।
2: बिल्कुल,
0: साधारण पानी बच्चों को बोरिंग लग सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे कि नींबू पानी, पुदीना या खीरा डालकर उसका फ्लेवर बदल दें। रंग बिरंगी बोतल में पानी पीने को बच्चों को हम दे सकते हैं। और भी कशिश कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम बच्चों के अंदर पानी पीने की आदत विकसित कर सकते हैं, तो वो बातें आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
2: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें बच्चों की बोतल को रोचक बनाना है, जैसे कि हम उन्हें पानी पीने के लिए अलग अलग तरह की बोतल दे सकते हैं साथियों, जिस पर कार्टून बने हुए हो, जिससे हम देखेंगे कि बच्चे अच्छी तरीके से पानी भी पी पाएंगे, क्योंकि वो बोतल उन्हें आकर्षक लगेगी।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही आप दोस्तों उन्हें साधारण पानी न देकर पानी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप नियमित समय भी तय करें, जैसे कि बच्चों को समय समय पर पानी पीने की आदत आप डलवाएं, जैसे कि सुबह उठते ही उन्हें पानी दें, खेलने के बाद पानी दें, और खाना खाने से पहले और बाद में भी पानी पीने के लिए कहें।
1: बिल्कुल,
2: इससे अंजलि जी बच्चों की एक नियमित आदत बन जाएगी पानी पीने की।
1: जी बिल्कुल,
2: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बता ही रहे हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं।
1: जी,
2: तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम में होंगी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए सही मात्रा में पानी क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की उम्र के गतिविधि के अनुसार हमें बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। जैसे कि 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 5 या 7 गिलास हमें पानी देना चाहिए। 9 से 13 वर्ष के लिए हमें 7 से 9 गिलास पानी देना चाहिए। अगर ये हम जाने कशिश की पानी की कमी के दुष्परिणाम के बारे में,

0: चाहिए, बच्चों को बार बार याद दिलाना चाहिए, मीठे पेय पदार्थ की मात्रा हमें कम रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों को मजबूरी में नहीं बल्कि खेल खेल में पानी पीने की आदत डालें।
2: जी हाँ।
1: जैसे कि हर घंटे एक गिलास पानी का खेल, स्टिकर या इनाम देकर प्रोत्साहित करें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चे स्कूल में अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं,
2: बिल्कुल,
1: इसलिए उन्हें अच्छी बोतल दें और बार बार याद दिलाएं कि वे पानी जरूर पिए। बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि हम बच्चों को बचपन से ही पानी पीने का महत्व सिखा दे कशिश, तो वे जीवन भर स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इसलिए हमें बच्चों में ये आदत विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ और सशक्त बनी रहे।
2: जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कशिश के बच्चे जो हैं वो खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और ये जो आदत है वो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को चाहिए कि वो इस आदत को खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें।
2: जी जी हाँ, अंजलि जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत विकसित करना केवल एक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि साथियों ये एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव रखने जैसा है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि जब बच्चा सही मात्रा में पानी पीना सीख जाता है तो साथियों वो अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगता है, और साथ ही धीरे धीरे आत्म देखभाल यानी कि सेल्फ केयर की ओर भी बढ़ता है।
1: जी जी
2: दोस्तों, ये आदत जो है वो उसे भविष्य में भी कई बीमारियों से बचाती है, और उसके एकाग्रता और ऊर्जा के साथ साथ खुशहाली को भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल
2: अंजलि जी और रीना, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, बदलती जीवन शैली में, जहाँ कृत्रिम पेय पदार्थ जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ पानी जैसी सरल चीज को महत्व देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।
1: जी हाँ,
2: यदि परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे तो ये छोटी सी आदत एक बड़े सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल
2: जी, इसलिए ये कहना जरूरी है कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि पानी पीना एक नियम है, बल्कि उन्हें ये बताएं कि पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है और अपनी सेहत से प्यार करने का एक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखेंगे कि जब बच्चे इस सोच को अपने मन में बिठा लेंगे तब पानी पीना उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।
0: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि आधुनिक समय की चुनौतियों के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्यास का एहसास भी नहीं होता।
2: बिल्कुल,
0: इसके अलावा पानी पीना एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है जिसे बचपन से ही विकसित करना आवश्यक होता है। यदि हम बच्चों को सही तरीके से प्रेरित करें, उन्हें उदाहरण दे और पानी को उनके जीवन का हिस्सा बना दे साथियों, तो वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य ही देश का भविष्य है दोस्तों, और इसे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए पानी जैसी छोटी छोटी आदतों का बड़ा योगदान भी होता है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों हमारी आपसे ढेर सारी रही, हमने जाना कि हम बच्चों में पानी पीने की आदत को कैसे विकसित कर सकते हैं, साथ ही उनके जीवन में पानी का क्या महत्व है, ऐसे ही हमारी ढेर सारी बातें रही अंजलि जी।
0: जी,
2: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
1: जी,
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपनी दोस्त

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत में राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करूँगी। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आकरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात होने वाली है, क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है, यानी कि श्रोता साथियों डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानी को लेकर। जी आज का समय हम देखते हैं मनीषा और कशिश की डिजिटल युग का समय है।
0: जी हाँ,
1: मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं और रात को सोने से पहले भी वही हमारा साथी होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या कहीं हमारी निजी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही है।
0: जी हाँ। बिल्कुल,
1: तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही। जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि आज का समय डिजिटल युग का समय है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सरकारी सेवाएं, श्रोता साथियों, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारी जिंदगी आसान जरूर हुई है, लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। वो है हमारी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि डेटा की चोरी होना।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बार श्रोता साथियों हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी जानकारी कब, कैसे और किसके द्वारा चुरा ली जाती है। यह गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि श्रोता साथियों हमारी छोटी सी लापरवाही हमें बड़े नुकसान में डाल सकती है। इसीलिए साथियों हमें यह समझना जरूरी है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। हम देखते हैं साथियों कि जानकारी चोरी क्या होती है। जानकारी चोरी यानी कि जब कोई व्यक्ति हमारी निजी जानकारी जैसे कि हमारा नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड या फिर फोटो या कोई वीडियो बिना हमारी अनुमति के हासिल कर लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है साथियों, तो उसे हम जानकारी चोरी कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज के डिजिटल युग में ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि ये वर्तमान में आम हो चुका है।
0: जी हाँ,
1: अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये चोरी आखिर होती कैसे है। अगर दोस्तों आपको बताएं तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और तुरंत लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं साथियों तो आपकी जानकारी चोरी हो जाती है। साथ ही रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल में फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते समय भी हमारा डेटा हैक कर लिया जाता है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: जिसके कारण भी हम देख सकते हैं कि हमारी जानकारियां जो है वो चोरी हो जाती है।
2: और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम हर छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन करते हैं। बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, बातचीत, यहाँ तक कि अपनी निजी भावनाएं भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। ऐसे में हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल, फोटो, लोकेशन इंटरनेट पर मौजूद रहती है।
1: जी जी,
2: जानकारी चोरी का मतलब है मनीषा और कशिश की किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को उसकी अनुमति के बिना चुराना, उसका गलत इस्तेमाल करना।
1: बिल्कुल,
2: ये काम अक्सर हैकर्स या साइबर अपराधी करते हैं। वे हमारी जानकारी चुराकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, फर्जी अकाउंट बना सकते हैं या हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जानकारी ही हमारी पहचान है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि जानकारी चोरी होना बहुत कठिन काम है, लेकिन श्रोता साथियों सच ये है कि आज के समय में यह काफी आसान हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ आम तरीके हैं श्रोता साथियों जिससे डाटा चोरी हो जाता है। जैसे कि हमारा पासवर्ड चोरी होना, अगर हम आसान पासवर्ड रख देते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे पासवर्ड आसान रख देते हैं तो हैकर्स को पता चल जाता है, इसके द्वारा वे हमारे अकाउंट से डाटा चोरी कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही श्रोता साथियों कई बार हम बिना जांचे परखे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या नकली वेबसाइट पर जानकारी डाल देते हैं, इससे भी हमारा डाटा चोरी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि श्रोता साथियों हम अक्सर अपनी निजी जानकारी जैसे कि लोकेशन, फोन नंबर या व्यक्तिगत बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। इससे अपराधियों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। तो ये तो हम जान पाए हैं कि जानकारी चोरी होने के क्या कारण हो सकते हैं। अब अगर यही ये बात करें कि जानकारी चोरी होने के नुकसान क्या है।
0: जी,
1: तो श्रोता साथियों अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाए तो बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, हमारी फेक प्रोफाइल बन सकती है जैसा कि आपने बताया था जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: और लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, साथ ही हमारी पहचान का दोस्तों गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए इन सभी हैकर से हमें खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं जागृति जी, मनीषा
0: जी,
1: कि किस प्रकार से हैकर्स हमारी जानकारी चुरा लेते हैं और उनसे हमें सुरक्षित रहना है।
0: बिल्कुल,
1: तो आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: जी हाँ जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ,

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है, यानी कि हम डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानियों से आपको अवगत करवा रहे थे, यही जानते हैं कि डेटा चोरी के क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: जी
0: हाँ। अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं, पहचान का दुरुपयोग हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी हो जाती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें जिंदगी भर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पछताना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कहने को छोटी बात है लेकिन श्रोता साथियों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी गलती बड़ा नुकसान कर देती है।
1: जी,
0: इसीलिए आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम कुछ सरल और सावधानियों को अपना सकते हैं, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का हम उपयोग करें, ओटीपी या पासवर्ड किसी से साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, केवल भरोसेमंद ऐप को ही डाउनलोड करें, फोन और ऐप को समय समय पर अपडेट करें।
1: जी,
0: इसी के साथ पब्लिक वाईफाई से न जुड़ें।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही बात आती है क्या हमारी जानकारी सच में सुरक्षित है। श्रोता साथियों ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने सावधान हैं। सरकार और कंपनियां अपनी तरह से सुरक्षा के उपाय तो करती हैं, लेकिन श्रोता साथियों अंतिम जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारी जानकारी चोरी होने की

0: संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, आज के समय में बच्चे और युवा इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन वे कई बार सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि गेमिंग एप्स की जानकारी नहीं रखते, अजनबी लोगों से ऑनलाइन बातचीत करने में सावधान नहीं रहते, माता पिता को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी नहीं देते। साथ ही श्रोता साथियों, सरकार और बड़ी कंपनियां भी डाटा सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाए जा रहे हैं, बैंक और कंपनियां सुरक्षा सिस्टम मजबूत कर रही हैं, साइबर क्राइम सेल लोगों की मदद करने के लिए मौजूद है। श्रोता साथियों, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम खुद सावधान नहीं रहेंगे तो खतरा बना रहेगा।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे में डिजिटल जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अगर हम जागरूक हैं जागृति जी, तो हम सुरक्षित हैं। और वहीं अगर हम लापरवाह हैं, तो हम खतरे में हैं।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में दोस्तों जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से आज जान पाए हैं कि कैसे हमारी जानकारियां चोरी हो जाती है, और ऐसे में हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी सुरक्षा है दोस्तों। इसलिए डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
2: अगर हम सतर्क न रहे श्रोता साथियों, तो हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं।
1: जी हाँ।
2: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जानकारी आपकी पहचान है, और आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल,
2: इसे श्रोता साथियों किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखें।
1: जी हाँ।
2: सोच समझ कर लिंक पर क्लिक करें, सावधानी से शेयरिंग करें और समझदारी से डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कानून और हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होता है श्रोताओं, तो वो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कर सकता है।
2: हाँ।
1: कहा गया है कि कानून जागरूक है, अब नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोताओं आज का युग डिजिटल युग है, जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी ही हमारी असली पहचान बन चुकी है।
2: बिल्कुल,
1: सुविधा के साथ खतरे भी बढ़े हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी और जागरूकता से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि डिजिटल दुनिया में कदम सोच समझ कर बढ़ाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी पूरी पहचान को खतरे में डाल सकती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हमारी जानकारी बहुत कीमती हो गई है। अगर श्रोता साथियों ये गलत हाथ में चली जाए तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क रहें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
2: बिल्कुल,
0: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि सुरक्षा सिर्फ सरकार कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी भी है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी ही सुरक्षा है। अगर हम जागरूक और सतर्क रहेंगे तो हमारी जानकारी सुरक्षित रहेगी और हम डिजिटल दुनिया का सुरक्षित तरीके से आनंद ले सकेंगे।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और यहाँ पर हमारे श्रोता साथियों से एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी कहना चाहेंगे, हम देखते हैं जागृति जी कि कई लोग टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ते नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: जो कि सबसे बड़ी अनदेखी है।
0: बिल्कुल,
2: हम सब क्या करते हैं दोस्तों कि आई अग्री पर क्लिक कर देते हैं और बिना पढ़े।
1: जी हाँ।
2: लेकिन उसे में लिखा होता है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, किसके साथ आप उसे शेयर कर रहे हैं, यानी हम खुद ही अपनी जानकारी देने की अनुमति ऐसे में दे देते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ।
2: तो हमें करना क्या है दोस्तों कि जब भी टर्म्स और कंडीशंस आते हैं किसी ऐप पर, तो हमें उन्हें सबसे पहले पढ़ लेना है।
1: बिल्कुल।
2: जी हाँ। हम कह सकते हैं कि दोस्तों इनसाइडर थ्रेट जो होता है वो खतरा अपने ही लोगों से हमें होता है।
1: जी हाँ।
2: हर बार हैकर बाहर का हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी ऑफिस का कर्मचारी, किसी संस्था का स्टाफ या फिर अंदर के लोग भी डेटा लीक कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ें, और साथ ही आई अग्री पर तो श्रोता साथियों सोच समझकर ही क्लिक करें।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे। पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल, बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथ ही जागृति।

0: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है फोन पर बात करने के शिष्टाचार को लेकर। आज का युग संचार का युग है। मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां एक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे अंजलि, वहीं आज कुछ सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। फोन पर बातचीत करना सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, संस्कार और व्यवहार का भी आईना होता है। इसलिए फोन पर बात करते समय शिष्टाचार का पालन करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं फोन पर बात करने के क्या शिष्टाचार होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया अंजलि कि फोन पर बात हो सभ्य और सरल, तभी हमारा व्यक्तित्व सफल बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई बार फोन का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वह बातचीत के लिए हो, काम के लिए हो, या जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन श्रोता साथियों, इस तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वह है फोन पे बात करने की शिष्टाचार।
0: जी हाँ,
1: शिष्टाचार का अर्थ है श्रोता साथियों विनम्रता, सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार करना। जैसा हम आमने सामने बातचीत में शालीनता रखते हैं, वैसे ही फोन पर भी सही तरीके से बात करना उतना ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: फोन पर हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है, इसलिए हमारा व्यवहार और बोलने का तरीका हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि फोन पर बातचीत करते समय उचित भाषा, सही लेजा और सामने वाले के प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें यह ध्यान रखना शामिल होता है कि हम कैसे बात शुरू करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे अपनी बात रखते हैं। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह हमारे संस्कार और सामाजिक समझ का हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा व्यवहार न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाता है श्रोता साथियों, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि फोन पर बातचीत में सामने वाला व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, इसलिए हमारी आवाज, भाषा और बोलने का तरीका ही हमारे व्यक्तित्व का

0: श्रोताओं, आज के समय में फोन का उपयोग केवल निजी बातचीत के लिए नहीं है बल्कि व्यापार, शिक्षा और आधिकारिक कार्यों के लिए भी किया जाता है।
1: जी,
0: ऐसे में फोन पर शिष्टाचार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फोन उठाते समय सबसे पहले अभिवादन करना होगा, जैसे कि नमस्ते, हेलो, सुप्रभात हम बोल सकते हैं, हमें जो भी अच्छा लगे हम बोल सकते हैं।
1: जी जी,
0: इसके बाद हम अपना परिचय देना चाहे ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि हम कौन बात कर रहे हैं। यदि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले पूछे कि क्या वो व्यक्ति बात करने के लिए उपलब्ध है या नहीं। ये छोटी सी बात सामने वाले के प्रति सम्मान दर्शाती है। अंजलि,
1: बिल्कुल इसी के साथ जागृति जी, हमें सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में नहीं।

0: से या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और बिना परिचय दिए सीधे बात करना अशिष्टता कहलाता है।
1: बिल्कुल,
0: बार बार कॉल करना, लगातार मिस्ड कॉल देना गलत है। इसी के साथ जागृति जी, हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए।

0: बातचीत के दौरान बीच में टोकना, चिल्लाना या गुस्सा करना गलत शिष्टाचार है।
1: बिल्कुल,
0: हमेशा धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात सुने और फिर अपनी बात को रखें। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फोन पर बात करने के शिष्टाचारों को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हमारी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से फोन पर बात करते समय हमें शिष्टाचार को बनाए रखना है। श्रोता साथियों, सामाजिक और व्यवसायिक सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन पर अच्छा व्यवहार हमें सामाजिक और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक विनम्र व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि सामाजिक जीवन में फोन शिष्टाचार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब लोग किसी कार्यक्रम में कॉल करते हैं या आपसे संवाद करते हैं तो शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी होता है। यह न केवल कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब एक व्यक्ति शिष्टाचार अपनाता है श्रोता साथियों, तो वह दूसरों को प्रेरित भी करता है, जिससे पूरे समुदाय में अच्छे व्यवहार की संस्कृति विकसित होती है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, फोन करने का समय बहुत जरूरी होता है। बहुत सुबह या देर रात में कॉल करना अनुचित माना जाता है, जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मीटिंग में है या व्यस्त है तो बार बार कॉल करना गलत आदत है। ऐसे में मैसेज छोड़ देना बेहतर होता है। बस, ट्रेन, अस्पताल, विद्यालय, किसी भी सभा में फोन पर जोर जोर से बातचीत करना अशिष्टता मानी जाती है। ऐसे स्थानों पर फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखना चाहिए। श्रोताओं, यदि बहुत जरूरी कॉल हो तो धीरे और संक्षिप्त में बात करनी चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। अगर गलती से किसी को गलत नंबर मिल जाए तो विनम्रता से क्षमा करें, कहकर कॉल समाप्त कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह यदि कोई हमें गलत नंबर से कॉल करता है तो उसे भी शालीनता से जवाब देना होगा। बात खत्म होने पर अचानक फोन काट देना गलत है। बातचीत समाप्त करते समय धन्यवाद, ठीक है, फिर बात करेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग आप जरूर करें। इससे बातचीत का अंत भी सकारात्मक और सफल बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं वो जल्दबाजी में और तनाव के कारण फोन पर सही व्यवहार करना भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गुस्सा, अधीरता और असंयमित भाषा के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। श्रोता साथियों, इस समस्या का समाधान है स्वयं में सुधार और जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम थोड़ी सी सावधानी और धैर्य रखें तो हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है श्रोता साथियों कि फोन पर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का भी संचार है। हमारी आवाज में छिपा व्यवहार सामने वाले के मन में हमारी छवि बनाता है। या तो वह हमें एक समझदार, विनम्र और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखेगा या फिर असंवेदनशील और असभ्य के रूप में।
1: बिल्कुल,
0: आज जब तकनीकी ने दूरियों को कम कर दिया है तब शिष्टाचार ही वह माध्यम है जो दिलों की दूरी को कम कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: फोन पर सही तरीके से बात करना कोई कठिन काम नहीं है बल्कि एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह फोन पर बातचीत करते समय संयम, सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखेगा तो न केवल व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे बल्कि समाज में भी सकारात्मक और आपसी समझ बढ़ेगी।
1: जी हाँ,
0: आवश्यकता है कि हम तकनीक का उपयोग करते समय अपने संस्कारों को न भूलें, क्योंकि सही व्यवहार ही सच्ची प्रगति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यह कहना चाहेंगे कि आज के युवा और बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। उन्हें बचपन से ही फोन पर सही तरीके से बात करना सिखाना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: उन्हें समझाना चाहिए कि फोन पर गाली गलौज, मजाक उड़ाना या गलत भाषा का प्रयोग करना गलत है। इससे न केवल उनका व्यक्तित्व खराब होता है बल्कि रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। कार्यालय, व्यवसाय से जुड़े कॉल्स में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ भाषा और व्यवहार दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी,
1: हमेशा औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट जानकारी दें और अनावश्यक बातें करने से बचें। इससे आपका प्रोफेशनल इमेज मजबूत होता है। हम कह सकते हैं कि फोन केवल एक साधन है लेकिन उसका सही उपयोग हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अंजलि, फोन पर बात करने का शिष्टाचार हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। श्रोताओं, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जैसे सही समय पर कॉल करना, विनम्र भाषा का उपयोग करना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना तो हम न केवल अच्छे संस्कार बन सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक छवि भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि हम तकनीक के साथ साथ अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छी बातचीत ही अच्छे रिश्तों की नींव होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि फोन पर शिष्टाचार अपनाएंगे तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, बोलचाल में विनम्रता लाएंगे तो जीवन को भी सफल बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि असल मायने में फोन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि हम केवल केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं रहें, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझें।
1: बिल्कुल,
0: यह एक ऐसी कला है जिसमें सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। जब हम धैर्य के साथ किसी की बात सुनते हैं और सोच समझ कर जवाब देते हैं, तो हम अनजाने में ही रिश्तों को मजबूत बना रहे होते हैं। यह भी समझना जरूरी है श्रोता साथियों कि तकनीक जितनी तेज हो रही है, उतना ही जरूरी है कि हमारा व्यवहार संतुलन और संवेदनशीलता भी बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम जल्दबाजी, गुस्से और कह सकते हैं कि लापरवाही में बात करेंगे, तो यह न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करेगा बल्कि हमारी छवि को भी कमजोर करेगा। इसके विपरीत यदि हम थोड़ी सी जागरूकता और संयम अपनाएं, तो हम हर बातचीत को सकारात्मक और प्रभावी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि फोन पर हमारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान होती है। एक नमस्ते किसी का दिन बना सकता है, एक धन्यवाद रिश्तों में मिठास खोल सकता है, और एक विनम्र बातचीत दिलों के बीच दूरी कम कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी सभ्य आदतें ही जीवन को महान बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: फोन पर हमारा हर शब्द, हर लहजा और हर व्यवहार ये तय करता है कि लोग हमें किस नजर से देखते हैं। इसलिए अगली बार जब भी हम फोन उठाएं, तो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उठाएं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vag

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हर हमेशा जब भी हम कार्यक्रम में हाजिर होते हैं तो हमारे साथ में एक नया विषय जुड़ता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हमारे बीच में एक अलग ही विषय जुड़ने जा रहा है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब खेत को समझते हैं। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वह मेहनत, उम्मीद, धैर्य और भविष्य का नाम है। खेत में जो बोया जाता है वही किसी दिन उग कर लगता है। अगर बीज अच्छा है, देखभाल ठीक है, समय पर पानी है तो फसल भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर लापरवाही हो, खरपतवार बढ़ जाए या मिट्टी कमजोर हो जाए तो मेहनत के बावजूद परिणाम वैसा नहीं आता। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम उसमें क्या बो रहे होते? क्या हम विश्वास बो रहे होते या शक? क्या हम प्रेम बो रहे हैं या कटुता? क्या हम धैर्य बो रहे हैं या जल्दबाजी? क्या हम सीख बो रहे हैं या सिर्फ शिकायतें? यही सवाल आज की चर्चा का केंद्र है। जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारे सवालों के जवाब को। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप अवश्य बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम क्या बोल रहे होते। जी हाँ दोस्तों, हर खेत की शुरुआत जमीन से होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो साधारण बीज भी अच्छा फल दे सकता है। अगर मिट्टी कमजोर है तो उत्तम बीज भी संघर्ष करेगा। और जिंदगी भी मिट्टी की तरह ही होती है। और जिंदगी में वह मिट्टी क्या है? वह है हमारी सोच। जी हाँ दोस्तों, अगर सोच में सकारात्मक सीखने की इच्छा है और खुलापन है तो जीवन की फसल मजबूत होगी। लेकिन अगर सोच डर, तुलना और नकारात्मकता से भरी हुई है तो विश्वास रुक जाता है। जैसी सोच की मिट्टी वैसे जीवन की फसल। अब बात आती है बीज की, तो हमारे जीवन में बीज है हमारे विचार और आदतें। जैसा कि दोस्तों, खेत में बीज छोटा होता है पर भविष्य बड़ा बनाता है, उसी तरह जीवन में छोटी आदतें और छोटे विचार बड़े परिणाम दे सकते हैं। अगर हम रोज सम्मान बोते हैं, ईमानदारी बोते हैं, अनुशासन बोते हैं, दया बोते हैं तो एक दिन यही चरित्र की फसल बनते हैं। लेकिन साथियों, यकीन मानिए, हम टालम टोल, गुस्सा, तुलना, लालच बो रहे हैं तो उसी की फसल भी लौटेगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि जीवन हमें क्या दे रहा है, प्रश्न यह है कि हम जीवन में क्या बो रहे हैं। बीज बोकर श्रोता साथी, किसान बैठ नहीं जाता, उसे पानी देना पड़ता है। और जीवन में पानी क्या है? निरंतर प्रयास। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास ही सपनों को जिंदा रखता है। जैसे कि खेत में एक दिन पानी देकर महीनों फसल नहीं उगती, वैसे ही जीवन में एक दिन मेहनत करके बड़े परिणाम नहीं मिलते। कहना चाहूंगी कि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी की फसल को रोज थोड़ी मेहनत का पानी चाहिए। जी हाँ साथियों, हम अक्सर धूप से बचना चाहते हैं, पर किसान जानता है कि धूप के बिना फसल कमजोर रह जाएगी। और हमारे जीवन में धूप है हमारी कठिनाइयाँ। जी हाँ, समस्याएं सिर्फ हमें रोकती नहीं है, हमें पकाती भी है। वे हमें मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उनसे लड़ना सिखाती है। अक्सर हम हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हमेशा हम हमारी जिंदगी से साथी शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है वैसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन हमने किसी परेशानी का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि हमारा जो जीवन है ना, उसमें कठिनाइयाँ, संघर्ष, उतार चढ़ाव सब कुछ आते जाते रहेगा। और हम समाज में जीते हैं, समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, तो उसमें बहुत सी बार हमारी आलोचना होना या सम्मान मिलना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन सारी चीजों को हम कैसे लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी फसल होती तो हम इसे कैसे बोते, ये बात जो है वो हमारे जीवन की रूपरेखा को ही बदल कर रख देती है। ये बातें निरंतर कार्यक्रम में आगे मैं आपसे और भी ऐसे ही करती रहूंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

यूं इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करें खरपतवार की। तो जैसा कि खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उगता है, अगर समय पर नहीं निकाला जाए तो वही पोषण खा जाती है। और हमारी जिंदगी में खरपतवार क्या है साथियों, ये मैं आपको बताऊं तो बेवजह की चिंता करना, दूसरों से तुलना करना, मन की कड़वाहट, पुरानी नाराजगी को हमेशा अपने अंदर रखना, नकारात्मक संगति, अगर इन्हें हमने नहीं हटाया तो ये हमारी ऊर्जा खा जाएगी। इसलिए सिर्फ अच्छा बोना काफी नहीं है, बुरी चीजों को हटाना भी हमारे लिए जरूरी है। और जिस तरीके से खेत में पोषण चाहिए होता है तो जीवन में भी पोषण बहुत जरूरी है। और वह पोषण क्या है, तो वो पोषण है हमारा अनुभव, हमारी सीख, बड़ों की सलाह। कई बार असफलता भी खाद बनती है, जो गिरकर सीखा वही आगे मजबूत खड़ा हुआ है। किसी ने कहा है कि कई हारे फसल खराब नहीं करती, मिट्टी बेहतर बनाती है। हर मौसम खेती के अनुकूल नहीं होता, कभी सूखा, कभी बरसात, कभी पाला। जीवन में भी श्रोता साथियों, हर समस्या एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी कठिन दिन आते हैं। समझदारी इसी में है कि हर मौसम में अच्छा बने रहो। समझदारी यह है कि हर मौसम में हमें कैसे टिके रहना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। श्रोता साथियों, आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो धैर्य भी रखता है। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं खोजता, उसे पता है कि इन सारी चीजों में समय लगेगा, लेकिन जीवन में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज मेहनत कल सफलता, यह हमेशा संभव नहीं है दोस्तों। धैर्य वह गुण है जो खेती भी बचाता है और जीवन भी। जो धैर्य बोता है वही स्थाई फल काटता है। खेत अक्सर अकेले नहीं संभलता, परिवार, पड़ोसी, समुदाय, सबकी भूमिका होती है। और जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते सांझा खेती है। अगर हम भरोसा बोए, संवाद बोए, सहयोग बोए तो रिश्ते फलेंगे, लेकिन वहीं अगर हम इन सारी चीजों को लेकर हमेशा अलग ही चीज करेंगे, जैसे कि भरोसा तोड़ेंगे किसी का, संवाद नहीं बनाकर रखेंगे, किसी को सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो सांझा खेती न बनकर अकेलेपन में रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा वो बोना है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। हम क्या बो रहे हैं इसका आत्ममंथन हमें अवश्य करना है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर जिंदगी खेत है तो हम क्या बो रहे हैं? क्या हम जल्दबाजी बो रहे हैं, तनाव बो रहे हैं, शिकायत बो रहे हैं, या उम्मीद, संयम, करुणा, सीख और प्रेम बो रहे हैं? क्योंकि जो बोया जाएगा वही लौटेगा। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी एक खेत है तो हम सब किसान हैं। हमारे विचार बीज हैं, हमारी

आदतें खेती हैं, हमारे कर्म पानी हैं, हमारा धैर्य मौसम झेलने की ताकत है, और जो फसल हम कल काटेंगे वो आज की बुआई पर निर्भर करती है। इसलिए अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छे बीज बोने होंगे। अगर जीवन में हमें श्रोता साथियों शांति चाहिए तो भीतर विश्वास बोना होगा। अगर बेहतर समाज चाहिए तो व्यवहार में सहयोग बोना होगा। जी हाँ श्रोता साथियों, क्योंकि जिंदगी की मिट्टी खाली नहीं रहती, कुछ न कुछ तो उगता ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। बीज छोटा होता है, असर बड़ा। आज का एक अच्छा विचार श्रोता साथियों कल की पूरी फसल बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि हर इंसान अपने मन में रोज कुछ न कुछ बोता है। कोई उम्मीद बोता है तो कोई शिकायत। जो व्यक्ति हर कठिनाई में संभावना देखता है वह उम्मीद बो रहा है। जो हर परिस्थिति में सिर्फ कमी देखता है वह हताश बो रहा है। और दोनों की फसल अलग होती है। इसलिए अगर जिंदगी एक खेत है तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। क्योंकि जीवन अपने आप नहीं खिलता, उसे विचारों, कर्मों, रिश्तों और धैर्य से उगाना पड़ता है। अगर हम भीतर सच्चे बीज बोएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए बाहर अच्छी फसल जरूर आएगी। उम्मीद बोएंगे तो साहस उगेगा, विश्वास बोएंगे तो रिश्ते उगेंगे, और धैर्य बोएंगे तो सफलता उगेगी, और सेवा बोएंगे तो समाज खिलेगा। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी का खेत खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ उगता ही है। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि हम उसमें वही बोएं जिसे कल गर्व से काट सकें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की हमारी जो बातचीत है कि अगर जिंदगी एक खेत है तो हम उसमें क्या बो रहे हैं, कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति इसी अनुमति के साथ। नमस्कार।

0: समझ गई। हाँ,
1: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: बिल्कुल
2: मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है बचत और निवेश से सुरक्षित करें अपना बुढ़ापा।
1: जी हाँ,
2: यानी कि हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय जो है परिवार, बच्चों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में लगा देता है।
1: जी हाँ,
2: युवावस्था में कमाई होती है, शरीर में ताकत होती है और आत्मविश्वास भी भरपूर होता है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
2: धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और जरूरतें पहले से ज्यादा बढ़ने लगती है। ऐसे समय में यदि आर्थिक सुरक्षा न हो तो बुढ़ापा चिंता, तनाव, दूसरों पर निर्भरता में बदल सकता है।
1: जी हाँ,
2: आज के समय में श्रोता साथियों हमें यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कमाई में से थोड़ी थोड़ी बचत और सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी बिल्कुल,
2: बचत और निवेश सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है मनीषा,
1: बल्कि
2: हर छोटे बड़े परिवार के लिए जरूरी होते हैं। चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, गृहिणी हो, दुकानदार हो या नौकरी करने वाला व्यक्ति, हर किसी को अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: बुढ़ापा जीवन का ऐसा पड़ाव है श्रोता साथियों जहाँ इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की।
1: जी हाँ,
2: यदि समय रहते सही योजना बनाई जाए तो बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि सुकून भरा समय बन सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दे।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं बचत और निवेश से सुरक्षित करें अपना भविष्य को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज का समय तेजी से बदलती जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और अनिश्चितता का समय है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। वह चाहता है कि उसके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन अधिक कमाई पर लेना सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं है साथियों। यदि कमाई के साथ बचत और समझदारी में निवेश किया जाए अंजलि जी, तो भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कमाई को सही दिशा देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि बचत का अर्थ है अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए भी अलग रखना। यह राशि श्रोता साथियों छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ यही छोटी बचत बड़ा सहारा बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं मनीषा कि जब ज्यादा पैसा होगा तब बचत करेंगे, लेकिन सच यह है कि बचत की आदत पैसे से नहीं सोच से शुरू होती है। जो व्यक्ति कम आय में भी थोड़ी बचत करता है वही भविष्य में मजबूत बनता है। आज के दौर में श्रोता साथियों अचानक आने वाली समस्याएं, बीमारी, नौकरी का संकट, खेती में नुकसान और पारिवारिक जरूरतें किसी भी समय आर्थिक परेशानी पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में बचत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। बचत के कई सारे फायदे हैं। हम देखते हैं कि भविष्य के लिए सुरक्षा मिल पाती है, दूसरों पर निर्भरता कम होती है, मानसिक तनाव कम होता है, आपातकाल में मदद मिलती है, साथ ही बुढ़ापे में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी मिलता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सिर्फ पैसे को घर में रख देना ही पर्याप्त नहीं होता। समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, यदि पैसा बढ़ेगा नहीं तो भविष्य में उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। इसलिए मनीषा हम कह सकते हैं कि बचत के साथ निवेश भी जरूरी है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़ सके, जैसे कि बैंक की योजनाओं में फिक्स डिपॉजिट करके, पोस्ट ऑफिस योजना, पेंशन योजना, बीमा योजना, सोना या जमीन खरीद कर हम ये कर सकते हैं और स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। श्रोता साथियों, सही निवेश व्यक्ति को भविष्य में नियमित आय और आर्थिक मजबूती भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ नियमित आय के साधन कम हो जाते हैं, लेकिन खर्च कम होने से श्रोता साथियों स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य के खर्चे बढ़ जाते हैं, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है और कई बार दूसरों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में श्रोता साथियों यदि व्यक्ति के पास बचत और निवेश हो तो वह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सकता है। इसीलिए बचत और निवेश केवल पैसे जमा करने का नाम नहीं है साथियों, बल्कि यह भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक बड़ा साधन है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि बचत हमें अचानक आने वाली परेशानियों से भी बचाती है। बीमारी, दुर्घटना, नौकरी का नुकसान या किसी पारिवारिक संकट के समय बचत हमें बचाती है। श्रोता साथियों, यही बचत आगे चलकर बुढ़ापे को सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति अपनी युवावस्था तक श्रोता साथियों नियमित नहीं होता है, वो वृद्धावस्था के आर्थिक संकटों का भी सामना कर पाता है। आज के समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें, इलाज, शिक्षा, अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी होती जा रही है। ऐसे में श्रोता साथियों वर्तमान की कमाई पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें बचत भी करनी होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि बुढ़ापे के लिए हमारे पास बचत करना क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से कि बचत क्या है, क्यों जरूरी है और निवेश क्या है।
1: जी हाँ,
0: बात करें मनीषा के बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, पहले संयुक्त परिवार होते थे।
1: जी हाँ,
0: बुजुर्गों की जिम्मेदारी परिवार मिलकर उठाता था, लेकिन आज समाज तेजी से बदल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: छोटे परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चे रोजगार के लिए दूसरे शहर में जा रहे हैं और जीवन बदल रही है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, यदि बुजुर्ग आर्थिक रूप से मजबूत न हो तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी हाँ,
0: उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। यदि बचत न हो तो इलाज करना मुश्किल हो सकता है। श्रोता साथियों, आर्थिक कमजोरी इंसान को दूसरों पर निर्भर बना देती है।
1: बिल्कुल,
0: उससे आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से कि पैसों की चिंता बुजुर्गों में तनाव और अकेलेपन को बढ़ा सकती है।
1: जी हाँ,
0: जिस व्यक्ति के पास अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन होता है वह आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि उनकी आय कम है इसलिए वे बचत नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि छोटी छोटी बचत ही बड़े भविष्य की नींव बनती है।
1: जी हाँ,
0: यदि कोई व्यक्ति रोज केवल 20 से या 50 रुपए भी बचा लेता है तो सालों में यह एक बड़ी राशि बन सकती है। उदाहरण के लिए चाय या अनावश्यक खर्च कम करना, फिजूल खरीदी से बचना, बिजली पानी की बचत, हर महीने निश्चित राशि अलग रखना, ये छोटी आदतें भविष्य में बड़ा लाभ देती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि घर की आर्थिक व्यवस्था संभालने में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गाँव और शहरों में कई महिलाएं छोटी बचत करके परिवार को संकट से बचाती हैं। महिलाएं यदि स्वयं सहायता समूह, बैंक खाते या छोटी निवेश योजना से जुड़े तो वे अपने परिवार के भविष्य को मजबूत बना सकती हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: बार देखा गया है मनीषा कि घर की महिलाओं द्वारा की गई बचत जो है वो बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे में परिवार को सहारा देती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का समय दिखावे का समय बनता जा रहा है। लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगे हैं, महंगे मोबाइल, फैशन, पार्टियां, अनावश्यक खरीदारी में पैसे खर्च कर देते हैं। कई लोग केवल दूसरों की नकल करने पर भी खर्च कर देते हैं। यदि श्रोता साथियों, व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे तो वह आसानी से बचत कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन की खुशियां हम छोड़ दें, बल्कि श्रोता साथियों, समझदारी से खर्च किया जाए तो जरूरतें और इच्छाएं दोनों पूरी हो सकती है हमारी। जो व्यक्ति आज फिजूल खर्ची करता है साथियों, उसे भविष्य में पछताना पड़ता है। वही जो व्यक्ति आज संयम से खर्च करता है उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब माता पिता बचत और निवेश की आदत को अपनाते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं। परिवार में आर्थिक अनुशासन का वातावरण बनता है। साथ ही बच्चे समझते हैं कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उनका सही उपयोग करना वे सीखते हैं। श्रोता साथियों, यदि परिवार में बचत की संस्कृति हो तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आर्थिक मजबूत बनेंगी। यह केवल व्यक्ति ही नहीं साथियों, बल्कि हमारे पूरे समाज के विकास में भी सहायक है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि घर की आर्थिक व्यवस्था संभालने के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारतीय परिवारों में महिलाओं की छोटी छोटी बचत करके परिवार को मजबूत बनाती है। कई बार हम देखते हैं कि कठिन समय आने पर बचत परिवार के काम आता है। आज महिलाएं भी नौकरी और व्यवसाय कर रही है, इसीलिए श्रोता साथियों, उन्हें भी अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। महिलाओं की आर्थिक स्थिरता ही उनके आत्मनिर्भर बनने का कारण होती है और पूरे परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाती हैं वे।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे की तैयारी बाद में करेंगे, लेकिन जितनी जल्दी बचत और निवेश शुरू किया जाए उतना ही अधिक लाभ मिलता है।
1: जी हाँ,
0: युवा अवस्था में कमाई की क्षमता ज्यादा होती है, जिम्मेदारियां संभालने की ताकत होती है, लंबे समय तक निवेश बढ़ सकता है।
1: जी हाँ
0: साथियों, जो व्यक्ति 25 या 30 वर्ष की उम्र से बचत शुरू करता है उसे भविष्य में कम परेशानियां होती है।
1: जी हाँ,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोग नगद पैसा घर में रखते हैं या बिना योजना के खर्च कर देते हैं, लेकिन अब गाँव में भी बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। यदि किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार नियमित बचत करें तो वे खेती के संकट से बच सकते हैं, बच्चों की शिक्षा में मदद कर सकते हैं और बुढ़ापे में सुरक्षित रह सकते हैं। श्रोता साथियों, गाँव में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है कि कम कमाओ लेकिन थोड़े बचा कर रखो।
1: बिल्कुल,
0: सरकार ने बुजुर्गों और आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जीवन बीमा योजना। श्रोता साथियों, इन योजनाओं का लाभ लेकर आम व्यक्ति भी भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बचत और निवेश केवल शहर के लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी श्रोता साथियों उतने ही आवश्यक है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले लोगों को श्रोता साथियों नियमित बचत करें लेकिन भविष्य को सुरक्षित बनाएं। गाँव में लोग अक्सर अंजलि जी हम देखते हैं कि नगद पैसा घर में रखते हैं, लेकिन यह सुरक्षित तरीका नहीं है साथियों। बैंक, डाकघर या सरकारी योजनाओं का उपयोग करके आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि सरकार ने लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें पेंशन योजना, बीमा योजना, बचत योजना भी शामिल है श्रोता साथियों। इन योजनाओं के उद्देश्य से श्रोता साथियों वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता हमें मिलती है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, श्रोता साथियों इन योजनाओं के माध्यम से सामान्य आय वाला व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। लोग उनके बारे में जागरूक होते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। आगे भी ये बातें निरंतर श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे बचत और निवेश से कैसे हमारा बुढ़ापा हम सुरक्षित करें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके। युवा अवस्था में व्यक्ति अपने पास कमाने की शक्ति रखता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की क्षमताएं भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, यदि आर्थिक तैयारी पहले से न हो तो जीवन हमारे लिए कठिन बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि बचत और निवेश जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए श्रोता साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल धन जमा करने का साधन नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने और सम्मानजनक बनाने की एक प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि आजकल दिखावे की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगे हैं। शादी, ब्याह, मोबाइल, फैशन, अनावश्यक चीजों पर खर्च बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कमाई से ज्यादा खर्च होगा तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समझना जरूरी है कि जरूरत और इच्छा में फर्क करें।
0: जी हाँ,
1: दिखावे से बचें, उधार की आदत कम करें और आय के अनुसार खर्च करें। सादगी और समझदारी भविष्य को सुरक्षित बनाती है श्रोता साथियों।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ बच्चों को भी सिखाना होगा बचत की आदत के बारे में। यदि बचपन से बच्चों को बचत का महत्व सिखाया जाए तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को हमें सिखाना होगा मनीषा गुल्लक में पैसे जमा करना, अनावश्यक खर्च से बचना, मेहनत और पैसे की कीमत समझना, और बचत ही शिक्षा का आधार होती है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा केवल आर्थिक नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारी भी हमें सिखाती है।
0: जी हाँ,
1: कह सकते हैं हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि जिस व्यक्ति के पास भविष्य के लिए कुछ बचत होती है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसे हर समय डर नहीं रहता कि आगे क्या होगा। बचत मन को शांति देती है, परिवार में भरोसा बढ़ाती है, बुढ़ापे को सुरक्षित करती है और आत्मसम्मान बनाए रखती है। इसलिए बचत केवल जमा करना नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा भी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन के हर उम्र में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। युवावस्था में व्यक्ति कमाई करता है, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन बुढ़ापे में श्रोता साथियों आय कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि आवश्यकता बनी रहती है, दवाइयां, इलाज, देखभाल, खर्च बढ़ने लगता है श्रोता साथियों। यदि व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा न हो तो मानसिक रूप से कमजोर बन सकता है। आज के समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि महंगाई भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जो वस्तु आज सस्ती है वो आगे जाके महंगी हो जाती है। वह आने वाले वर्षों में कुछ सालों में श्रोता साथियों हमारे लिए खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाएं भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: बचत को श्रोता साथियों लोग सोचते हैं कि बचत तभी संभव है जब आय अधिक हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि बचत की शुरुआत छोटे कदमों से भी हम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी सी राशि को बचाता है अंजलि जी, तो समय के साथ वो राशि बड़ी बन जाती है।
1: हाँ।
0: एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार नियमित बचत से आर्थिक मजबूती बनती है साथियों। बचत की आदत व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। वह सोच समझ कर खर्च करना सीखता है और साथ ही अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि एक छोटे से गाँव में एक हरिराम और उसकी पत्नी कमला रहते थे। हरिराम खेती करते थे और कमला घर संभालने के साथ साथ थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी कर लिया करती थी।
0: बिल्कुल,
1: परिवार बड़ा था, दो बेटे, एक बेटी और बूढ़ी माँ। आमदनी ज्यादा नहीं थी लेकिन घर किसी तरह चल जाता था। गांव के ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि जो आज है वही सच है, किसने देखा है। इसलिए कमाई होते ही पैसा खर्च हो जाता था। कोई नया मोबाइल खरीदता तो कोई शादी ब्याह में दिखावा करता तो कोई उधार लेकर भी शौक पूरे करता। लेकिन कमला की सोच थोड़ी अलग थी। वह अक्सर कहती कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
0: बिल्कुल,
1: आज हाथ पैर चल रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हरिराम हंसकर कहते, अरे कमला इतना क्या सोचती हो, भगवान सब ठीक करेंगे।
0: जी हाँ,
1: कमला मुस्कुराकर जवाब देती कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। फिर हुई छोटी सी शुरुआत। कमला ने एक दिन घर में एक मिट्टी की गुल्लक रखी। उन्होंने तय किया कि रोज थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालेंगे।
0: जी हाँ,
1: 10 रुपए तो कभी 20 रुपए तो कभी बाजार से बचा हुआ पैसा। उससे पूछते कि अम्मा इतने थोड़े पैसों से क्या होगा। कमला प्यार से कहती, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे बच्चों को भी मजा आने लगा। जब भी कहीं से कुछ पैसे मिलते तो वे भी गुल्लक में डालते थे।
0: जी हाँ,
1: गाँव की कुछ महिलाएं कमला का मजाक उड़ाती थी, इतनी बचत करके क्या रानी बनोगी, अरे जिंदगी 2 दिन की है, खाओ पियो और मजे करो। लेकिन कमला कहती किसी की बात का बुरा नहीं मानती, वह बस मुस्कुराकर कहती आज की बचत कल का सहारा बनती है।
0: जी हाँ,
1: कुछ सालों बाद एक साल गांव में सूखा पड़ गया, खेती खराब हो गई, कई किसानों को कर्ज लेना पड़ा, घरों में परेशानियां बढ़ने लगी। हरिराम भी चिंतित रहने लगे। एक रात उन्होंने कमला से कहा, अब क्या होगा
0: जी,
1: में फसल नहीं हुई है, घर कैसे चलेगा। कमला शांत थी। उन्होंने अलमारी से एक डिब्बा निकाला, उसमें बैंक की पासबुक, कुछ जमा रसीदे और थोड़े पैसे रखे थे। हरिराम हैरान रह गया, ये सब क्या है। कमला बोली, जो पैसे सालों से बचा रही थी वही है, मैंने पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा थोड़ा जमा किया था। हरिराम की आंखें भर आई। तुमने संभाल लिया कमला, उस बचत से घर का खर्चा चला, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और खेती के लिए बीज भी खरीद लिया।
0: जी हाँ।
1: हरिराम भी बचत का महत्व समझ चुके थे। उन्होंने गाँव के लोगों को समझाना शुरू किया कि कमाई चाहे कम हो लेकिन बचत जरूर होनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाना शुरू किया, लोगों ने बैंक खाते खुलवाए, कुछ लोगों ने बीमा और पेंशन योजना में पैसा जमा करना शुरू किया। गांव में पहली बार लोग भविष्य के बारे में सोचने लगे थे।
0: बिल्कुल।
1: समय बीतता गया। हरिराम का बड़ा बेटा पढ़ लिख कर शिक्षक बन गया, छोटा बेटा कृषि से जुड़ा काम करने लगा और बेटी ने सिलाई केंद्र खोल लिया। एक दिन बेटे ने अपने पिता से पूछा, बाबूजी हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हरिराम मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी अम्मा के उस छोटे से गुल्लक से। कमला यह सुनकर चुपचाप मुस्कुराती रही। अब हरिराम और कमला बूढ़े हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था लेकिन मन शांत था, क्योंकि उनके पास थोड़ी बचत थी, पेंशन थी और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान था। उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था और गांव में लोग उनका सम्मान भी करते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा उनसे मिलने आए और उन्होंने पूछा, चाचा जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है। हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, बेटा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसमें से भविष्य के लिए कुछ बचाना सीखो।
0: बिल्कुल।
1: जवानी में की गई छोटी बचत ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत बनती है। कमला ने भी मुस्कुराकर कहा, और याद रखना, बचत केवल पैसों की नहीं होती, अच्छी आदतों की, रिश्तों की और विश्वास की भी करनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: उस दिन गांव के युवाओं ने सिर्फ यह कहानी नहीं सुनी बल्कि जीवन का एक बड़ा सच समझ लिया।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बचत और निवेश से हम अपना बुढ़ापा कैसे सुरक्षित करें, इसे लेकर बातें चली रही है और कुछ छोटी मोटी रह गई है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: जी जी।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों की मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहूंगी कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो व्यक्ति मजबूत, कमाने वाला और आत्मनिर्भर दिखाई देता है, वही आने वाले वर्षों में उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थितियों के कारण सहारे की जरूरत महसूस कर सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, समझदारी इसी में ही है कि इंसान केवल आज के

0: नहीं बल्कि आने वाले कई कल के लिए तैयारी करें।
1: बिल्कुल,
0: बचत और निवेश भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह केवल पैसों का हिसाब नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति का आधार है। जिस व्यक्ति ने समय रहते अपनी आय का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा होता है उसको बुढ़ापा डर, चिंता और मजबूरी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सुकून में गुजरता है।
1: बिल्कुल,
0: समाज में अक्सर मनीषा ये देखा जाता है कि लोग अपनी पूरी कमाई वर्तमान की जरूरतों और दिखावे में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही व्यक्ति आर्थिक असुरक्षा के कारण टूटने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी ओर जो लोग छोटी छोटी बचत की आदत अपनाते हैं वे धीरे धीरे अपने भविष्य को मजबूत बना लेते हैं।
1: जी हाँ,
0: यह जरूरी नहीं है कि बचत लाखों में हो, जरूरी यह है कि आदत नियमित और सोच दूरदर्शी हो।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज भी कई लोग बचत और निवेश के महत्व को लेकर गंभीर नहीं हैं। वे सोचते हैं कि भविष्य की चिंता बाद में करेंगे, लेकिन समय निकल जाने के बाद पछतावा ही हासिल होता है। साथियों, समाज में आर्थिक जागरूकता फैलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों में कार्यक्रमों से लोगों को बचत और निवेश की जानकारी हमें देनी चाहिए। रेडियो, संचार पत्र और सामाजिक संस्थाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अंजलि जी निभा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। साथियों, समझदारी यह है कि कमाई का सही उपयोग किया जाए, कुछ पैसे वर्तमान की जरूरतों के लिए और कुछ भविष्य की सुरक्षा के लिए।
0: जी हाँ,
1: जो लोग श्रोता साथियों केवल आज के सुख के बारे में सोचते हैं वे कल संकट में पड़ सकते हैं। वही जो व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है उसका जीवन सुरक्षित रहता है। साथ ही श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बचत और निवेश कोई बोझ नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षा का आधार है। यह आदत व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है और आने वाले समय के लिए मजबूत बनाती है। बुढ़ापा श्रोता साथियों तभी सुखद बनता है जब आर्थिक तैयारी पहले से की जाए। हमें समझना होगा कि भविष्य अपने आप ही सुरक्षित नहीं होता, उसे सुरक्षित बनाना पड़ता है। आज भी थोड़ी समझदारी आने से श्रोता साथियों कल को हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अंजलि जी ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचाए, सही जगह निवेश करे और अपने साथ साथ अपने परिवारों को भी सुरक्षित बनाए। यही सच्ची दूरदर्शिता है और साथ ही श्रोता साथियों बुढ़ापे को सुरक्षित रखने का यही सरल और माध्यम है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि आज के बदलते समय में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से जागरूक बने। परिवार को, बच्चों को बचपन से ही पैसों की कीमत समझानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में शामिल करना चाहिए। युवाओं को कमाई शुरू होते ही बचत और निवेश की आदत डालनी चाहिए। गाँव और शहरों में लोगों को बैंकिंग, पेंशन और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि हर वर्ग का व्यक्ति सुरक्षित भविष्य बना सके।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बुढ़ापा केवल शरीर की कमजोरी का समय नहीं होता बल्कि अनुभव, जीवन की समझ का समय भी होता है।
1: जी हाँ,
0: यदि आर्थिक सुरक्षा साथ हो तो यही समय परिवार को मार्गदर्शन देना, समाज से जुड़े रहना और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर बना देता है। लेकिन यदि आर्थिक तैयारी न हो तो इंसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: जो मानसिक रूप से उसे कमजोर बना देती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आज जो कमा रहे हैं आज ही खर्च नहीं करना है। हमारी ये जो सोच है इसे हमें बाहर निकालना होगा। हमें ये समझना होगा कि भविष्य की सुरक्षा किसी एक दिन अचानक नहीं बनती बल्कि ये रोज की छोटी समझदारी और अनुशासन को संयम से तैयार करती है।
1: जी हाँ,
0: आज अंत में कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कमाई की असली सफलता केवल वर्तमान की सुख सुविधाओं में नहीं है बल्कि उस संतोष में छिपी होती है जहाँ इंसान अपने आने वाले कल को लेकर निश्चित हो सके।
1: जी हाँ,
0: सच्चा सुख वही है जहाँ बुढ़ापा मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ बिताया जाए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही का। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को नमस्कार। साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है साथियों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच, पंटपुर सिटी से है, फिल्म का नाम है कुर्बान। गीत के बोले दोस्तों, तू जब जब मुझको पुकारे। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। मंजू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना MP से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों आर्य नगर कोक्का बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरसी जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल जी। सुकरी कला से अमित जंगेल, आशुष, अमित जंगेल, कुशल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदय शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच पंटपुर से ही। फिल्म का नाम है आसमान से ऊंचा। गीत के बोले दोस्तों, जिया प्यार मांगे। इस गीत के साथ जुड़ना चार है जाकिर मुलानी, सोमिया, सुमान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बनू मुलानी, बादशाह मुलानी जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला भक्तपत से है आसिर खान, मुमित नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों, जिला भक्तपत से है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितुन जी, प्यारी पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से है रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच बुरखेड़ा से ही। फिल्म का नाम है दिल, गीत के बोले मुझे नींद ना आए। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह जी, दिशा कुशल जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों गश डुंडवारा से ही शमशुल कमर राही, शाही फातिमा, आनंद खान, फेनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच महाराष्ट्र से ही। फिल्म का नाम है खिलौना, गीत के बोले सनम तुम बेवफा के नाम से। दोस्तों, इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर जी ने और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे संतोष जी, सुकन्या जी, सविता जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। राजस्थान से राम कुमार जी, चंद्रकला जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमाउद्दीन जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन, बेबी, आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच रघुवीर नगर से ही। फिल्म का नाम है बेटा। गीत के बोले दोस्तों, कोयल सी तेरी बोली। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नाइबा और लड्डू जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कृतपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच शिवाजी नगर खड़वा से ही। फिल्म का नाम है मोरा, गीत के बोले दोस्तों टिप टिप बरसा पानी। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बंगेल, रुक्मणी बंगेल, साहिल बंगेल, भारती बंगेल जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोले पायलिया। साथियों, इस गीत के साथ जुना चार है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों कुरवाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी जी, राहुल कुमार जी, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, भाटापारा छत्तीसगढ़ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र जी, नोखेलाल जी। और इस गीत की अनुरोध करता है भिवानी से कृष्णा मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुनहाल मेरा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है, और एक बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हम सुन रहे थे, पाइए लिया ओहो हो। इसी गीत के बाद दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जैसा कि सुबह 11 बजे से सिलसिला बना हुआ था आपके साथ हमारा, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना के साथ में, और अब आप इसे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों बिना देरी किए बढ़ते हैं हम हमारी फिर से अगली फरमाइश के नगमे की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश का नगमा है भोपालगढ़ राजस्थान से आया है, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, और गीत के बोल हैं देखा है तेरी आंखों में। इस प्यारे से नगमे को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने, और फरमाइश करता राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, धर्मेंद्र छिपाजी, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपाजी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बता दो दोस्तों, हरबिंदर सिंह नगर नवा शहर से हैं, सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश साधु जी, शिक्षा साधु, प्रतीक्षा साधु और मेक्स जी। इसी बीच गाजीबाद से भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी, नरसिंहगढ़ से हैं, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सोमन, कोमल परी, कृतिका रमेशचंद्र डांगी जी। दोस्तों सहारनपुर से दोस्त जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, नाम बताना चाहूंगी जॉन डिकेस्ट्रो, अजय डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। नवाशहर पंजाब से गंगदीप थाटी, रीता कुमारी थांडी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका थांडी और वाणी थांडी जी। दोस्तों इसी बीच नरवेल महाराष्ट्र भी श्रोता साथी इसी गीत को सुनना चाहते हैं, पीएस नवाड़कर, निमला नवाड़कर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं देखा है तेरी आंखों में प्यार। तब तक आप बने रहिएगा श्रोता साथियों वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का हमारा गीत आया है दोस्तों कुम्हार गली कोलगांव से। फिल्म का नाम है साजन। गीत के बोल हैं, तू शायर है मैं तेरी शायरी। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी ने। और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। खेल बाजार पानीपत से श्रोता साथी हैं जो इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडू गोल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पियूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू भाभी कोयल सिक्का। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, पीपी कुलथे जी, धनंजय टहुल। गर्ल्स उडवाला से श्रोता साथी हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौशिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तू शायर है मैं तेरी शायरी।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, तो शायर है मैं तेरी शायरी। इसी प्यारे से गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, परदेश। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यह फरमाइश हमारे बीच आई है श्रीरामपुर आर्ट से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, श्रीरामपुर से हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, अजय सोनवाने पुनावाले से, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने और शायसा सोनवाने जी। इसी बीच श्रीरामपुर से और भी साथी जुड़ रहे हैं, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, शिकेत दले, जीविका दले, सनिका दले, पुनावाले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा, अविका, शायसा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। इसी बीच हमारे साथी हैं पंजाब फजिलका से हैं भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, आर खेड़ा, बीके खेड़ा जी, सिवन जीवन बुक जी और समस्त खेड़ा परिवार सदस्य गण। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है दोस्तों छत्तीसगढ़ मदनपुर से आया है। फिल्म का नाम है कामचोर। गीत के बोल है साथियों तुत संग प्रीत लगाई सजना। फरमाइश करता है श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। इसी बीच हमारे साथी और भी रोहतक हरियाणा से जुड़ रहे हैं, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी सरवत देशमुख। मधुबनी बिहार से सबर परवाना जी, शाहिद अली जी, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। राजस्थान से शंभुदाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, मॉडल टाउन करनाल से सुधन उतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इश्पित शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदारा जी, सुनीता शर्मा जी, सुनीता जैन, सुनीता दिलो, हरिपाल कौर जी और मीनाक्षी तिवारी, बिपाशा शर्मा, सोनिया कलका, किरण ठाकुर जी। बिलाड़ा राजस्थान से और भी दोस्त जुड़ रहे, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है तुत संग प्रीत लगाई सजना।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था तुत्संग प्रीत लगाई सजना ओ रामा, इसी प्यारे से गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई चोकोनटी बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, राजा। गीत के बोल है फूल मांगू ना बहार मांगू। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे मोहम्मद सिद्ध अब्बासी, निकट प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, कलानोर से हैं नरेंद्र किरण, नितिन मयंक शर्मा जुड़ना चाह रहे हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, बंदना और प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। दोस्तों, नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, नीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है फूल मांगू ना बहार मांगू।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत है राजेंद्र गांव छत्तीसगढ़ से आया है। फरमाइश करता है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। इन श्रोताओं की फरमाइश है आदमी खिलौना है फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत जताते हो चाह हमसे। इस गीत को आवाज़ दी है साथियों मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता और भी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बता दूं गंजुटवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, याशिन हाशमी, शमशुल कमर राही। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नाशिद शेख, नाजन नाशिद, शाजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू शेष, राजपाल पंकज, काजल सीमा, अनवी तनवी, लक्ष सोहिनी, मोहरती बलवीर सिंह जी। दोस्तों दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश सिंगे, महस प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं गनौर से अनिल कुमार, तस्दीक, मुजफ्फर अली जी, अजित कसाना, मया देवी, कृतित, आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं बहुत जताते हो चाह हमसे।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए है, मैं आपको बताना चाहूँगी, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई है। फिल्म का नाम है द ट्रेन। गीत के बोल हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, कृणाल श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस राज। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। वसीम महाराष्ट्र से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिदेव सुरोशे, मायरा सुरोशे जी। राहुल नगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्ध प्रतिभा गुणाने जी। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मनत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत है पुन्ना जक्शन मस्तान पुन्ना से। फिल्म का नाम है तुम बिन, गीत के बोल हैं तेरी फरियाद। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। लोरमी जिजड़ी छत्तीसगढ़ से और भी श्रोता साथी इसी गीत को सुन रहे हैं। कमलकांत मरावी, प्रेमिला मरावी, निशा मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी जी और भी दोस्त इस गीत के साथ सुन रहे हैं। जुड़ना चाहते हैं गंजुटवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफाशा फिमरन जी और मोहम्मद अल्फेज शेवाद शेख जी। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से दोस्त जुड़ रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राधा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना, केशरी धान खुराना जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बेबी सारिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। धर्मपुरी से जुड़ना चाह रहे हैं मुशाजी खत्री, ईशाजी खत्री, जाकिर खत्री जी। दोस्तों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दोस्त हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रजन शाहू जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव जी, धर्मदास वाधवानी जी। रामपुर से जुड़ना चाह रहे अमरजीत शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इसी बीच जुड़ रहे बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार, लोकेश जोशी, वेदही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी। जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बुब्बन मुनहू, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी। साथियों, गोला बक्सर से हैं जयराम बिंद, सीतामुन्नी देवी, ललसा कुमारी जी, काजल कुमारी, प्रद्युमन और प्रीतम कुमार जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, अर्पणा नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं गंजुटवारा से शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलमन कलीम।

अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरी याद तेरी फरियाद। आपको बताना चाहूँगी दोस्तों यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे। भक्ति और

कथा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। 6:00 आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे 7:00। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बात। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:00। अगली कड़ी में कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जहां होगा बॉलीवुड के बेहतरीन गानों का तड़का और मस्ती का धमाका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9:00 से 10:00 के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर ले। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हैं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हैं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो फिर अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे
1: आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात होने वाली है, क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है?
0: बिल्कुल।
1: यानी कि श्रोता साथियों, डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानी को लेकर।
0: जी
1: आज का समय हम देखते हैं मनीषा और कशिश की, डिजिटल युग का समय है।
0: जी
1: मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं और रात को सोने से पहले भी वही हमारा साथी होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या कहीं हमारी निजी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही है?
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम हाजिर हुए हैं।
0: जी
1: लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही। जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि आज का समय डिजिटल युग का समय है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सरकारी सेवाएं, श्रोता साथियों, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारी जिंदगी आसान जरूर हुई है, लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। वो है हमारी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि डेटा की चोरी होना।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बार श्रोता साथियों, हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी जानकारी कब, कैसे और किसके द्वारा चुरा ली जाती है। यह गंभीर समस्या बन चुकी है, क्योंकि श्रोता साथियों, हमारे छोटी सी लापरवाही हमें बड़े नुकसान में डाल सकती है।
1: हाँ।
0: इसीलिए साथियों, हमें यह समझना जरूरी है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। हम देखते हैं साथियों कि जानकारी चोरी क्या होती है। जानकारी चोरी यानी कि जब कोई व्यक्ति हमारी निजी जानकारी जैसे कि हमारा नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड या फिर फोटो या कोई वीडियो बिना हमारी अनुमति के हासिल कर लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है साथियों, तो उसे हम जानकारी चोरी कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज के डिजिटल युग में ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि ये वर्तमान में आम हो चुका है।
0: जी हाँ,
1: अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये चोरी आखिर होती कैसे है। अगर दोस्तों आपको बताएं तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और तुरंत लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं साथियों, तो आपकी जानकारी चोरी हो जाती है। साथ ही रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल में फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते समय भी हमारा डेटा हैक कर लिया जाता है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: जिसके कारण भी हम देख सकते हैं कि हमारी जानकारियां जो है वो चोरी हो जाती है।
2: और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम हर छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन करते हैं, बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, बातचीत, यहाँ तक कि अपनी निजी भावनाएं भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। ऐसे में हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल, फोटो, लोकेशन इंटरनेट पर मौजूद रहती है।
1: जी जी,
2: जानकारी चोरी का मतलब है मनीषा और कशिश की किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को उसकी अनुमति के बिना चुराना, उसका गलत इस्तेमाल करना।
1: बिल्कुल,
2: ये काम अक्सर हैकर्स या साइबर अपराधी करते हैं। वे हमारी जानकारी चुराकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, फर्जी अकाउंट बना सकते हैं या हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जानकारी ही हमारी पहचान है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि जानकारी चोरी होना बहुत कठिन काम है, लेकिन श्रोता साथियों, सच ये है कि आज के समय में ये काफी आसान हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ आम तरीके हैं श्रोता साथियों जिससे डाटा चोरी हो जाता है। जैसे कि हमारा पासवर्ड चोरी होना, अगर हम आसान पासवर्ड रख देते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, ऐसे पासवर्ड आसान रख देते हैं तो हैकर्स को पता चल जाता है, इसके द्वारा वे हमारे अकाउंट से डाटा चोरी कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही श्रोता साथियों, कई बार हम बिना जांचे परखे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या नकली वेबसाइट पर जानकारी डाल देते हैं, इससे भी हमारा डाटा चोरी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, हम अक्सर अपनी निजी जानकारी जैसे कि लोकेशन, फोन नंबर या व्यक्तिगत बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। इससे अपराधियों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। तो ये तो हम जान पाए हैं कि जानकारी चोरी होने के क्या कारण हो सकते हैं। अब अगर यही ये बात करें कि जानकारी चोरी होने के नुकसान क्या है।
0: जी,
1: तो श्रोता साथियों, अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाए तो बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, हमारी फेक प्रोफाइल बन सकती है जैसा कि आपने बताया था जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: और लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, साथ ही हमारी पहचान का दोस्तों गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए इन सभी हैकर से हमें खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं जागृति जी, मनीषा
0: जी,
1: कि किस प्रकार से हैकर्स हमारी जानकारी चुरा लेते हैं और उनसे हमें सुरक्षित रहना है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन

0: अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ
2: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है, यानी कि हम डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानियों से आपको अवगत करवा रहे थे, यही जानते हैं कि डेटा चोरी के क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं, पहचान का दुरुपयोग हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी हो जाती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें जिंदगी भर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पछताना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कहने को छोटी बात है लेकिन श्रोता साथी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी गलती बड़ा नुकसान कर देती है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम कुछ सरल और सावधानियों को अपना सकते हैं, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का हम उपयोग करें, OTP या पासवर्ड किसी से साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, केवल भरोसेमंद ऐप को ही डाउनलोड करें, फोन और ऐप को समय समय पर अपडेट करें।
1: जी,
0: इसी के साथ पब्लिक वाईफाई से न जुड़े।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही बात आती है क्या हमारी जानकारी सच में सुरक्षित है। श्रोता साथियों, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने सावधान हैं। सरकार और कंपनियां अपनी तरह से सुरक्षा के उपाय तो करती हैं, लेकिन श्रोता साथियों अंतिम जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारी जानकारी चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, आज के समय में बच्चे और युवा इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन वे कई बार सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि गेमिंग एप्स की जानकारी नहीं रखते हैं, अजनबी लोगों से ऑनलाइन बातचीत करने में सावधान नहीं रहते हैं, माता पिता को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी नहीं देते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, सरकार और बड़ी कंपनियां भी डाटा सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाए जा रहे हैं, बैंक और कंपनियां सुरक्षा सिस्टम मजबूत कर रही हैं, साइबर क्राइम सेल लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। श्रोता साथियों, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम खुद सावधान नहीं रहेंगे तो खतरा बना रहेगा।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, आपने सही कहा, और ऐसे में डिजिटल जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अगर हम जागरूक हैं जागृति जी, तो हम सुरक्षित हैं, और वहीं अगर हम लापरवाह हैं तो हम खतरे में हैं।
0: बिल्कुल,
2: ऐसे में दोस्तों जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से आज जान पाए हैं कि कैसे हमारी जानकारियां चोरी हो जाती है, और ऐसे में हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी सुरक्षा है दोस्तों। इसलिए डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
2: अगर हम सतर्क न रहे श्रोता साथियों तो हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं।
0: जी हाँ।
2: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जानकारी आपकी पहचान है, और आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल,
2: इसे श्रोता साथियों किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखें।
1: जी हाँ।
2: सोच समझ कर लिंक पर क्लिक करें, सावधानी से शेयरिंग करें और समझदारी से डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कानून और हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होता है श्रोताओं, तो वो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कर सकता है।
1: हाँ।
0: कहा गया है कि कानून जागरूक है, अब नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए श्रोताओं, आज का युग डिजिटल युग है, जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी ही हमारी असली पहचान बन चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: सुविधा के साथ खतरे भी बढ़े हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी और जागरूकता से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि डिजिटल दुनिया में कदम सोच समझ कर बढ़ाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी पूरी पहचान को खतरे में डाल सकती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हमारी जानकारी बहुत कीमती हो गई है। अगर श्रोता साथियों ये गलत हाथ में चली जाए तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क रहें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि सुरक्षा सिर्फ सरकार कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी भी है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी ही सुरक्षा है। अगर हम जागरूक और सतर्क रहेंगे तो हमारी जानकारी सुरक्षित रहेगी और हम डिजिटल दुनिया का सुरक्षित तरीके से आनंद ले सकेंगे।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और यहाँ पर हमारे श्रोता साथियों से एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी कहना चाहेंगे, हम देखते हैं जागृति जी कि कई लोग टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ते नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: जो कि सबसे बड़ी अनदेखी है।
1: बिल्कुल,
2: हम सब क्या करते हैं दोस्तों कि आई अग्री पर क्लिक कर देते हैं और बिना पढ़े।
0: जी हाँ।
2: लेकिन उसे में लिखा होता है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, किसके साथ आप उसे शेयर कर रहे हैं, यानी हम खुद ही अपनी जानकारी देने की अनुमति ऐसे में दे देते हैं जागृति जी।
1: जी हाँ।
2: तो हमें करना क्या है दोस्तों कि जब भी टर्म्स और कंडीशंस आते हैं किसी ऐप पर, तो हमें उन्हें सबसे पहले पढ़ लेना है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ।
2: हम कह सकते हैं कि दोस्तों इनसाइडर थ्रेट जो होता है वो खतरा अपने ही लोगों से हमें होता है।
0: जी हाँ,
2: हर बार हैकर बाहर का हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी ऑफिस का कर्मचारी, किसी संस्था का स्टाफ या फिर अंदर के लोग भी डेटा लीक कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ें और साथ ही आई अग्री पर तो श्रोता साथियों सोच समझकर ही क्लिक करें।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे। जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ।
2: कशिश और रीना, आज हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में पानी पीने की आदत कैसे डालें।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि पानी जीवन का आधार है।
0: जी,
2: जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है वैसे ही पानी शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल,
2: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि विशेष रूप से बच्चों के लिए पानी का पर्याप्त सेवन बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि उनका शरीर विकास की अवस्था में होता है। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कशिश कि बच्चे पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक, जूस और अलग अलग जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों में पानी पीने की

0: की जिम्मेदारी बन जाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है
2: जी,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले हम इस गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है
1: जी,
0: कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि पानी का महत्व बच्चों के लिए बहुत अधिक होता है अंजलि जी।
1: जी,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के शरीर का लगभग कई प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है साथियों
1: जी,
0: और पाचन को सुधारता है
1: जी,
0: जिससे विषैले पदार्थों को बाहर निकालना आसान हो जाता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। यह हम देख सकते हैं कि पानी की कमी से बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने से एक अगर ये हम बात करें पानी पीने के महत्व के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में यह हमारी सहायता करता है। पानी शरीर के अंगों के सही विकास में मदद करता है हमारी, यह मांसपेशियां और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जैसे कि पानी भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर ये हम जाने कि पानी दिमाग विकास में हमारी सहायता करता है, अंजलि जी हम कह सकते हैं कि पानी की कमी से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां आती है, पर्याप्त पानी पीने से बच्चों की एकाग्रता भी इससे बढ़ती है।
2: बिल्कुल, हम देखते हैं रीना, बच्चों में पानी पीने की आदत क्यों नहीं बन पाती है, अगर इस बात को जाने तो कहते हैं स्वाद की कमी
1: जी।
2: पानी का कोई खास स्वाद नहीं होता, इसलिए बच्चे इसे कम पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बहुत सी बार मीठे पेय पदार्थों की ओर आकर्षण यानी कि कोल्ड ड्रिंक और पैकेट जूस बच्चों को अधिक लुभाते हैं
0: जी। हाँ,
2: अगर शुरू से ही आदत नहीं डाली जाती है तो बच्चे पानी पीने से बचते हैं। श्रोता साथियों, यदि घर के बड़े खुद पानी कम पीते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
2: बताएंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद उदाहरण बनना है
1: जी।
2: बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। यदि श्रोता साथियों आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे इसे अपनाएगा। साधारण पानी बच्चों को बोरिंग लग सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे कि नींबू पानी, पुदीना या खीरा डालकर उसका फ्लेवर बदल दें। रंग बिरंगी बोतल में पानी पीने को बच्चों को हम दे सकते हैं
0: जी। जी।
2: और भी कशिश कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम बच्चों के अंदर पानी पीने की आदत विकसित कर सकते हैं, तो वो बातें आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें बच्चों की बोतल को रोचक बनाना है, जैसे कि हम उन्हें पानी पीने के लिए अलग अलग तरह की बोतल दे सकते हैं साथियों
1: जी,
0: जिस पर कार्टून बने हुए हो, जिससे हम देखेंगे कि बच्चे अच्छी तरीके से पानी भी पी पाएंगे क्योंकि वो बोतल उन्हें आकर्षक लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आप दोस्तों उन्हें साधारण पानी न देकर पानी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप नियमित समय भी तय करें, जैसे कि बच्चों को समय समय पर पानी पीने की आदत आप डलवाएं, जैसे कि सुबह उठते ही उन्हें पानी दें, खेलने के बाद पानी दें और खाना खाने से पहले और बाद में भी पानी पीने के लिए कहें।
1: बिल्कुल,
0: इससे अंजलि जी बच्चों की एक नियमित आदत बन जाएगी पानी पीने की
1: जी। बिल्कुल,
0: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बता ही रहे हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं
1: जी,
0: तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम में होंगी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी आगे की बातचीत की ओर। अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए सही मात्रा में पानी क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की उम्र के गतिविधि के अनुसार हमें बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। जैसे कि 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 5 या 7 गिलास हमें पानी देना चाहिए। 9 से 13 वर्ष के लिए हमें 7 से 9 गिलास पानी देना चाहिए। अगर यही हम जाने कशिश की पानी की कमी के दुष्परिणाम के बारे में,

0: और शिक्षक की भूमिका के बारे में, तो माता पिता को घर में पानी पीने का वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों को बार बार याद दिलाना चाहिए, मीठे पेय पदार्थ की मात्रा हमें कम रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों को मजबूरी में नहीं बल्कि खेल खेल में पानी पीने की आदत डालें।
2: जी हाँ।
1: जैसे कि हर घंटे एक गिलास पानी का खेल, स्टिकर या इनाम देकर प्रोत्साहित करें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चे स्कूल में अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं,
2: बिल्कुल,
1: इसलिए उन्हें अच्छी बोतल दे और बार बार याद दिलाएं कि वे पानी जरूर पिए। बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि हम बच्चों को बचपन से ही पानी पीने का महत्व सिखा दे कशिश, तो वे जीवन भर स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इसलिए हमें बच्चों में ये आदत विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ और सशक्त बनी रहे।
2: जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कशिश के बच्चे जो हैं वो खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और ये जो आदत है वो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को चाहिए कि वो इस आदत को खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें।
2: जी जी हाँ, अंजलि जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत विकसित करना केवल एक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि साथियों ये एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव रखने जैसा है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि जब बच्चा सही मात्रा में पानी पीना सीख जाता है तो साथियों वो अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगता है, और साथ ही धीरे धीरे आत्म देखभाल यानी कि सेल्फ केयर की ओर भी बढ़ता है।
1: जी जी
2: दोस्तों, ये आदत जो है वो उसे भविष्य में भी कई बीमारियों से बचाती है, और उसके एकाग्रता और ऊर्जा के साथ साथ खुशहाली को भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल,
2: अंजलि जी और रीना, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलते जीवन शैली में जहाँ कृत्रिम पेय पदार्थ जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ पानी जैसी सरल चीज को महत्व देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।
1: जी हाँ,
2: यदि परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे, तो ये छोटी सी आदत एक बड़े सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल
2: जी, इसलिए ये कहना जरूरी है कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि पानी पीना एक नियम है, बल्कि उन्हें ये बताएं कि पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है और अपनी सेहत से प्यार करने का एक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखेंगे कि जब बच्चे इस सोच को अपने मन में बिठा लेंगे, तब पानी पीना उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।
0: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि आधुनिक समय की चुनौतियों के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्यास का एहसास भी नहीं होता।
2: बिल्कुल,
0: इसके अलावा पानी पीना एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है जिसे बचपन से ही विकसित करना आवश्यक होता है। यदि हम बच्चों को सही तरीके से प्रेरित करें, उन्हें उदाहरण दे और पानी को उनके जीवन का हिस्सा बना दे साथियों, तो वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य ही देश का भविष्य है दोस्तों, और इसे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए पानी जैसी छोटी छोटी आदतों का बड़ा योगदान भी होता है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों हमारी आपसे ढेर सारी रही, हमने जाना कि हम बच्चों में पानी पीने की आदत को कैसे विकसित कर सकते हैं, साथ ही उनके जीवन में पानी का क्या महत्व है, ऐसे ही हमारी ढेर सारी बातें रही अंजलि जी।
0: जी,
2: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
1: जी,
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
2: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को।
3: नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी ने मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी में तर लगी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदो ने मने कीधो कि 100 महीना होती मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना होती तने केवल मानो दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 एफएम मते। मैं आप सबनो हनुमान स्वागत करा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरते बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थई सके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक घना कन बातें थाएंगा, पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वाघ रेडियो 90.8।

0: વલ્લે આજે આપણા કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી સર, તો સપ્તકી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાત. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મેં અપના યોગદાન દે સકતી હૈ. ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે વન હમારે લિયે બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ. અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કે વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ. और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से, हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है. तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं. वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है
0: बिल्कुल,
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है. और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं. पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया,

0: उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें, और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यही सर, अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें

0: वनीकरण के जो कार्यक्रम हैं आजकल, तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं। यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है, और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हो।
1: जी जी।
0: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं। पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: वन संरक्षण की योजनाओं में इन पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है, यहीं सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
0: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
1: जी।
0: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं,

0: प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती है। तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं। अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहाँ पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहाँ वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहाँ नजर आने लगी है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीजें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियाँ हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है?
0: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगा देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित किए

क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें। इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने

0: जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
1: जी जी।
0: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देशीय कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડેતા કહતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: जागृति बुन आप कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अरे गोरी इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो कुछ खाया पिया नहीं है क्या
4: अरे दीदी क्या करूं कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा
3: अरे गोरी ये तो गर्भावस्था में होता ही है जी मचलाएगा खाने का मन नहीं करेगा पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा
4: अरे वाह दीदी अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी
3: ये हुई ना बात गोरी
2: याद रहे गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है फोन पर बात करने के शिष्टाचार को लेकर। आज का युग संचार का युग है। मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां एक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे अंजलि, वहीं आज कुछ सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। फोन पर बातचीत करना सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, संस्कार और व्यवहार का भी आईना होता है। इसलिए फोन पर बात करते समय शिष्टाचार का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम।

0: कि कैसे शिष्टाचार होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया अंजलि कि फोन पर बात हो सभ्य और सरल, तभी हमारा व्यक्तित्व सफल बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई बार फोन का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वह बातचीत के लिए हो, काम के लिए हो, या जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन श्रोता साथियों, इस तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वो है फोन पे बात करने की शिष्टाचार।
0: जी हाँ,
1: शिष्टाचार का अर्थ है श्रोता साथियों विनम्रता, सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार करना। जैसा हम आमने सामने बातचीत में शालीनता रखते हैं, वैसे ही फोन पर भी सही तरीके से बात करना उतना ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: फोन पर हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है, इसलिए हमारा व्यवहार और बोलने का तरीका हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि फोन पर बातचीत करते समय उचित भाषा, सही लेजा और सामने वाले के प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें यह ध्यान रखना शामिल होता है कि हम कैसे बात शुरू करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे अपनी बात रखते हैं। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह हमारे संस्कार और सामाजिक समझ का हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा व्यवहार न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाता है श्रोता साथियों, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि फोन पर बातचीत में सामने वाला व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, इसलिए हमारी आवाज, भाषा और बोलने का तरीका ही हमारा

0: का उपयोग केवल निजी बातचीत के लिए नहीं है बल्कि व्यापार, शिक्षा और आधिकारिक कार्यों के लिए भी किया जाता है।
1: जी जी,
0: ऐसे में फोन पर शिष्टाचार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फोन उठाते समय सबसे पहले अभिवादन करना होगा, जैसे कि नमस्ते, हेलो, सुप्रभात हम बोल सकते हैं, हमें जो भी अच्छा लगे हम बोल सकते हैं।
1: जी जी,
0: इसके बाद हम अपना परिचय देना चाहे ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि हम कौन बात कर रहे हैं। यदि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले पूछे कि क्या वो व्यक्ति बात करने के लिए उपलब्ध है या नहीं। ये छोटी सी बात सामने वाले के प्रति सम्मान दर्शाती है। अंजलि,
1: बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी हमें

0: ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और बिना परिचय दिए सीधे बात करना अशिष्टता कहलाता है।
1: बिल्कुल,
0: बार बार कॉल करना, लगातार मिस्ड कॉल देना गलत है। इसी के साथ जागृति जी, हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए।

0: पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक विनम्र व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि सामाजिक जीवन में फोन शिष्टाचार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब लोग किसी कार्यक्रम में कॉल करते हैं या आपसे संवाद करते हैं तो शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी होता है। यह न केवल कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब एक व्यक्ति शिष्टाचार अपनाता है श्रोता साथियों तो वह दूसरों को प्रेरित भी करता है जिससे पूरे समुदाय में अच्छे व्यवहार की संस्कृति विकसित होती है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता

0: ऐसे में मैसेज छोड़ देना बेहतर होता है। बस, ट्रेन, अस्पताल, विद्यालय, किसी भी सभा में फोन पर जोर जोर से बातचीत करना अशिष्टता मानी जाती है। ऐसे स्थानों पर फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखना चाहिए। श्रोताओं, यदि बहुत जरूरी कॉल हो तो धीरे और संक्षिप्त में बात करनी चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी न हो। अगर गलती से किसी को गलत नंबर मिल जाए तो विनम्रता से क्षमा करें, कहकर कॉल समाप्त कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह यदि कोई हमें गलत नंबर से कॉल करता है तो उसे भी शालीनता से जवाब देना होगा। बात खत्म होने पर अचानक फोन काट देना गलत है। बातचीत समाप्त करते समय धन्यवाद, ठीक है, फिर बात करेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग आप जरूर करें। इससे बातचीत का अंत भी सकारात्मक और सभ्य बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं वो जल्दबाजी में और तनाव के कारण फोन पर सही व्यवहार करना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गुस्सा, अधीरता और असंयमित भाषा के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। श्रोता साथियों, इस समस्या का समाधान है स्वयं में सुधार और जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम थोड़ी सी सावधानी और धैर्य रखें तो हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है श्रोता साथियों कि फोन पर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का भी संचार है। हमारी आवाज में छिपा व्यवहार सामने वाले के मन में हमारे

0: सही व्यवहार ही सच्ची प्रगति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यह कहना चाहेंगे कि आज के युवा और बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उन्हें बचपन से ही फोन पर सही तरीके से बात करना सिखाना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: उन्हें समझाना चाहिए कि फोन पर गाली गलौज, मजाक उड़ाना या गलत भाषा का प्रयोग करना गलत है। इससे न केवल उनका व्यक्तित्व खराब होता है बल्कि रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। श्रोता, कार्यालय व्यवसाय से जुड़े कॉल्स में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ भाषा और व्यवहार दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी,
1: हमेशा औपचारिक

0: उसका सही उपयोग हमें एक अच्छा इंसान बनाता है अंजलि। फोन पर बात करने का शिष्टाचार हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। श्रोताओं, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे सही समय पर कॉल करना, विनम्र भाषा का उपयोग करना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना, तो हम न केवल अच्छे संस्कार बन सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक छवि भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत है कि हम तकनीक के साथ साथ अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छी बातचीत ही अच्छे रिश्तों की नींव होती है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि फोन पर शिष्टाचार अपनाएंगे तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, बोलचाल में विनम्रता लाएंगे तो जीवन को भी सफल बना सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि असल मायने में फोन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि हम केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं

0: भी समझें।
1: बिल्कुल,
0: यह एक ऐसी कला है जिसमें सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। जब हम धैर्य के साथ किसी की बात सुनते हैं और सोच समझ कर जवाब देते हैं तो हम अनजाने में ही रिश्तों को मजबूत

0: कि हमारे संस्कारों की पहचान होती है। एक नमस्ते किसी का दिन बना सकता है, एक धन्यवाद रिश्तों में मिठास खोल सकता है और एक विनम्र बातचीत दिलों के बीच दूरी कम कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटे छोटी सभ्य आदतें ही जीवन को महान बनाती है। फोन पर हमारा हर शब्द, हर लहजा और हर व्यवहार ये तय करता है कि लोग हमें किस नजर से देखते हैं। इसलिए अगली बार जब भी हम फोन उठाएं तो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उठाएं।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है, ने मुँह मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्ते ना कही दीदो ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हर हमेशा जब भी हम कार्यक्रम में हाजिर होते हैं तो हमारे साथ में एक नया विषय जुड़ता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हमारे बीच में एक अलग ही विषय जुड़ने जा रहा है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब खेत को समझते हैं। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वह मेहनत, उम्मीद, धैर्य और भविष्य का नाम है। खेत में जो बोया जाता है वही किसी दिन उग कर लौटता है। अगर बीज अच्छा है, देखभाल ठीक है, समय पर पानी है तो फसल भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर लापरवाही हो, खरपतवार बढ़ जाए या मिट्टी कमजोर हो जाए तो मेहनत के बावजूद परिणाम वैसा नहीं आता। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम उसमें क्या बो रहे होते? क्या हम विश्वास बो रहे होते या शक? क्या हम प्रेम बो रहे हैं या कटुता? क्या हम धैर्य बो रहे हैं या जल्दबाजी? क्या हम सीख बो रहे हैं या सिर्फ शिकायतें? यही सवाल आज की चर्चा का केंद्र है। जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारे सवालों के जवाब को। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप अवश्य बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम क्या बोल रहे होते। जी हाँ दोस्तों, हर खेत की शुरुआत जमीन से होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो साधारण बीज भी अच्छा फल दे सकता है। अगर मिट्टी कमजोर है तो उत्तम बीज भी संघर्ष करेगा। और जिंदगी भी मिट्टी की तरह ही होती है। और जिंदगी में वह मिट्टी क्या है? वह है हमारी सोच। जी हाँ दोस्तों, अगर सोच में सकारात्मक सीखने की इच्छा है और खुलापन है तो जीवन की फसल मजबूत होगी। लेकिन अगर सोच डर, तुलना और नकारात्मकता से भरी हुई है तो विश्वास रुक जाता है। जैसी सोच की मिट्टी वैसी जीवन की फसल। अब बात आती है बीज की, तो हमारे जीवन में बीज है हमारे विचार और आदतें। जैसा कि दोस्तों, खेत में बीज छोटा होता है पर भविष्य बड़ा बनाता है, उसी तरह जीवन में छोटी आदतें और छोटे विचार बड़े परिणाम दे सकते हैं। अगर हम रोज सम्मान बोते हैं, ईमानदारी बोते हैं, अनुशासन बोते हैं, दया बोते हैं, तो एक दिन यही चरित्र की फसल बनते हैं। लेकिन साथियों, यकीन मानिए, हम टालमटोल, गुस्सा, तुलना, लालच बो रहे हैं तो उसी की फसल भी लौटेगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि जीवन हमें क्या दे रहा है, प्रश्न यह है कि हम जीवन में क्या बो रहे हैं। बीज बोकर श्रोता साथियों, किसान बैठ नहीं जाता, उसे पानी देना पड़ता है। और जीवन में पानी क्या है? निरंतर प्रयास। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास ही सपनों को जिंदा रखता है। जैसे कि खेत में एक दिन पानी देकर महीनों फसल नहीं उगती, वैसे ही जीवन में एक दिन मेहनत करके बड़े परिणाम नहीं मिलते। कहना चाहूंगी कि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी की फसल को रोज थोड़ी मेहनत का पानी चाहिए। जी हाँ साथियों, हम अक्सर धूप से बचना चाहते हैं, पर किसान जानता है कि धूप के बिना फसल कमजोर रह जाएगी। और हमारे जीवन में धूप है हमारी कठिनाइयाँ। जी हाँ, समस्याएं सिर्फ हमें रोकती नहीं है, हमें पकाती भी है। वे हमें मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उनसे लड़ना सिखाती है। अक्सर हम हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हमेशा हम हमारी जिंदगी से साथियों शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है वैसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन हमने किसी परेशानी का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि हमारा जो जीवन है ना, उसमें कठिनाइयाँ, संघर्ष, उतार चढ़ाव सब कुछ आते जाते रहेगा। और हम समाज में जीते हैं, समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, तो उसमें बहुत सी बार हमारी आलोचना होना या सम्मान मिलना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन सारी चीजों को हम कैसे लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी फसल होती तो हम इसे कैसे बोते, ये बात जो है वो हमारे जीवन की रूपरेखा को ही बदल कर रख देती है। ये बातें निरंतर कार्यक्रम में आगे मैं आपसे और भी ऐसे ही करती रहूंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें खरपतवार की। तो जैसा कि खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उगता है, अगर समय पर नहीं निकाला जाए तो वही पोषण खा जाती है। और हमारी जिंदगी में खरपतवार क्या है साथियों, ये मैं आपको बताऊं तो बेवजह की चिंता करना, दूसरों से तुलना करना, मन की कड़वाहट, पुरानी नाराजगी को हमेशा अपने अंदर रखना, नकारात्मक संगति, अगर इन्हें हमने नहीं हटाया तो ये हमारी ऊर्जा खा जाएगी। इसलिए सिर्फ अच्छा बोना काफी नहीं है, बुरी चीजों को हटाना भी हमारे लिए जरूरी है। और जिस तरीके से खेत में पोषण चाहिए होता है, तो जीवन में भी पोषण बहुत जरूरी है। और वह पोषण क्या है, तो वो पोषण है हमारा अनुभव, हमारी सीख, बड़ों की सलाह। कई बार असफलता भी खाद बनती है, जो गिरकर सीखा वही आगे मजबूत खड़ा हुआ है। किसी ने कहा है कि कई हारे फसल खराब नहीं करती, मिट्टी बेहतर बनाती है। हर मौसम खेती के अनुकूल नहीं होता, कभी सूखा, कभी बरसात, कभी पाला। जीवन में भी श्रोता साथियों, हर समस्या एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी कठिन दिन आते हैं। समझदारी इसी में है कि हर मौसम में अच्छा बने रहो। समझदारी यह है कि हर मौसम में हमें कैसे टिके रहना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। श्रोता साथियों, आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो धैर्य भी रखता है। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं खोजता, उसे पता है कि इन सारी चीजों में समय लगेगा। लेकिन जीवन में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज मेहनत कल सफलता, यह हमेशा संभव नहीं है दोस्तों। धैर्य वह गुण है जो खेती भी बचाता है और जीवन भी। जो धैर्य बोता है वह स्थायी फल काटता है। खेत अक्सर अकेले नहीं संभलता, परिवार, पड़ोसी, समुदाय, सबकी भूमिका होती है। और जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते सांझा खेती है। अगर हम भरोसा बोएं, संवाद बोएं, सहयोग बोएं, तो रिश्ते फलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इन सारी चीजों को लेकर हमेशा अलग ही चीज करेंगे, जैसे कि भरोसा तोड़ेंगे, किसी का संवाद नहीं बनाकर रखेंगे, किसी को सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो सांझा खेती न बनकर अकेलेपन में रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा वो बोना है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। हम क्या बो रहे हैं, इसका आत्म मंथन हमें अवश्य करना है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर जिंदगी खेत है तो हम क्या बो रहे हैं? क्या हम जल्दबाजी बो रहे हैं, तनाव बो रहे हैं, शिकायत बो रहे हैं, या उम्मीद, संयम, करुणा, सीख और प्रेम बो रहे हैं? क्योंकि जो बोया जाएगा वही लौटेगा। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी एक खेत है तो हम सब किसान हैं। हमारे विचार बीज हैं, हमारी आदतें खेती हैं, हमारे कर्म पानी है, हमारा धैर्य मौसम झेलने की ताकत है। और जो फसल हम कल काटेंगे वो आज की बुआई पर निर्भर करती है। इसलिए अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छे बीज बोने होंगे। अगर जीवन में हमें श्रोता साथियों शांति चाहिए तो भीतर विश्वास बोना होगा। अगर बेहतर समाज चाहिए तो व्यवहार में सहयोग बोना होगा। जी हाँ श्रोता साथियों, क्योंकि जिंदगी की मिट्टी खाली नहीं रहती, कुछ न कुछ तो उगता ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। बीज छोटा होता है, असर बड़ा। आज का एक अच्छा विचार श्रोता साथियों कल की पूरी फसल बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि हर इंसान अपने मन में रोज कुछ न कुछ बोता है। कोई उम्मीद बोता है तो कोई शिकायत। जो व्यक्ति हर कठिनाई में संभावना देखता है वह उम्मीद बो रहा है। जो हर परिस्थिति में सिर्फ कमी देखता है वह हताश बो रहा है। और दोनों की फसल अलग होती है। इसलिए अगर जिंदगी एक खेत है तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। क्योंकि जीवन अपने आप नहीं खिलता, उसे विचारों, कर्मों, रिश्तों और धैर्य से उगाना पड़ता है। अगर हम भीतर सच्चे बीज बोएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए बाहर अच्छी फसल जरूर आएगी। उम्मीद बोएंगे तो साहस उगेगा, विश्वास बोएंगे तो रिश्ते उगेंगे, और धैर्य बोएंगे तो सफलता उगेगी, और सेवा बोएंगे तो समाज खिलेगा। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी का खेत खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ उगता ही है। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि हम उसमें वही बोएं जिसे कल गर्व से काट सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की हमारी जो बातचीत है कि अगर जिंदगी एक खेत है तो हम उसमें क्या बो रहे हैं, ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोलो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
2: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
1: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सु व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको

इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागड़ रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोता साथियों, आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करेंगे उन सपनों की जो आंखों में बसते हैं, दिल में धड़कते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। अगली कड़ी में कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जहां होगा बॉलीवुड के बेहतरीन गानों का तड़का और मस्ती का धमाका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सहे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुंद, आप एक कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: हो वे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात होने वाली है, क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है, यानी कि श्रोता साथियों डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानी को लेकर। जी हाँ। आज का समय हम देखते हैं मनीषा और कशिश की डिजिटल युग का समय है।
0: जी हाँ।
1: मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं और रात को सोने से पहले भी वही हमारा साथी होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या कहीं हमारी निजी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही है।
0: जी हाँ। बिल्कुल,
1: तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
3: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारी जानकारी चोरी तो नहीं हो रही। जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि आज का समय डिजिटल युग का समय है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सरकारी सेवाएं, श्रोता साथियों, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारी जिंदगी आसान जरूर हुई है, लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। वो है हमारी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि डेटा की चोरी होना।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बार श्रोता साथियों, हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी जानकारी कब, कैसे और किसके द्वारा चुरा ली जाती है। यह गंभीर समस्या बन चुकी है, क्योंकि श्रोता साथियों, हमारी छोटी सी लापरवाही हमें बड़े नुकसान में डाल सकती है।
1: हाँ।
0: इसीलिए साथियों, हमें यह समझना जरूरी है कि क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। हम देखते हैं साथियों कि जानकारी चोरी क्या होती है। जानकारी चोरी यानी कि जब कोई व्यक्ति हमारी निजी जानकारी जैसे कि हमारा नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड

0: या फिर फोटो या कोई वीडियो बिना हमारी अनुमति के हासिल कर लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है साथियों, तो उसे हम जानकारी चोरी कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के डिजिटल युग में ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि ये वर्तमान में आम हो चुका है।
1: जी हाँ,
0: अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये चोरी आखिर होती कैसे है। अगर दोस्तों आपको बताएं तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और तुरंत लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं साथियों, तो आपकी जानकारी चोरी हो जाती है। साथ ही रेलवे स्टेशन, कैफे या मॉल में फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते समय भी हमारा डेटा हैक कर लिया जाता है जागृति जी।
1: जी हाँ,
0: जिसके कारण भी हम देख सकते हैं कि हमारी जानकारियां जो है वो चोरी हो जाती है।
2: और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम हर छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन करते हैं, बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, बातचीत, यहाँ तक कि अपनी निजी भावनाएं भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। ऐसे में हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल, फोटो, लोकेशन इंटरनेट पर मौजूद रहती है।
0: जी जी,
2: जानकारी चोरी का मतलब है मनीषा और कशिश की किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को उसकी अनुमति के बिना चुराना, उसका गलत इस्तेमाल करना।
0: बिल्कुल,
2: ये काम अक्सर हैकर्स या साइबर अपराधी करते हैं। वे हमारी जानकारी चुराकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, फर्जी अकाउंट बना सकते हैं या हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जानकारी ही हमारी पहचान है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि जानकारी चोरी होना बहुत कठिन काम है, लेकिन श्रोता साथियों सच ये है कि आज के समय में ये काफी आसान हो गया है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ आम तरीके हैं श्रोता साथियों जिससे डाटा चोरी हो जाता है, जैसे कि हमारा पासवर्ड चोरी होना। अगर हम आसान पासवर्ड रख देते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे पासवर्ड आसान रख देते हैं तो हैकर्स को पता चल जाता है, इसके द्वारा वे हमारे अकाउंट से डाटा चोरी कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: साथ ही श्रोता साथियों कई बार हम बिना जांचे परखे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या नकली वेबसाइट पर जानकारी डाल देते हैं, इससे भी हमारा डाटा चोरी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि श्रोता साथियों हम अक्सर अपनी निजी जानकारी जैसे कि लोकेशन, फोन नंबर या व्यक्तिगत बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, इससे अपराधियों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। तो ये तो हम जान पाए हैं कि जानकारी चोरी होने के क्या कारण हो सकते हैं। अब अगर यही ये बात करें कि जानकारी चोरी होने के नुकसान क्या है
1: जी,
0: तो श्रोता साथियों अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाए तो बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, हमारी फेक प्रोफाइल बन सकती है जैसा कि आपने बताया था जागृति जी।
1: जी हाँ,
0: और लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, साथ ही हमारी पहचान का दोस्तों गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है।
2: बिल्कुल,
0: इसलिए इन सभी हैकर से हमें खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं जागृति जी, मनीषा
1: जी,
0: कि किस प्रकार से हैकर्स हमारी जानकारी चुरा लेते हैं और उनसे हमें सुरक्षित रहना है।
2: बिल्कुल,
0: तो आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
2: जी हाँ
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि क्या हमारी जानकारी चोरी हो रही है, यानी कि हम डिजिटल युग की सच्चाई और सावधानियों से आपको अवगत करवा रहे थे,
1: बिल्कुल
0: यही जानते हैं कि डेटा चोरी के क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर हमारी जानकारी चोरी हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं, पहचान का दुरुपयोग हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी हो जाती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें जिंदगी भर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पछताना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कहने को छोटी बात है लेकिन श्रोता साथी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटी गलती बड़ा नुकसान कर देती है।
1: जी,
0: इसीलिए
1: हाँ।
0: आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम कुछ सरल और सावधानियों को अपना सकते हैं, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का हम उपयोग करें, ओटीपी या पासवर्ड किसी से साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, केवल भरोसेमंद ऐप को ही डाउनलोड करें, फोन और ऐप को समय समय पर अपडेट करें।
1: जी,
0: इसी के साथ पब्लिक वाईफाई से न जुड़े।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही बात आती है क्या हमारी जानकारी सच में सुरक्षित है। श्रोता साथियों, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने सावधान हैं। सरकार और कंपनियां अपनी तरह से सुरक्षा के उपाय तो करती हैं, लेकिन श्रोता साथियों अंतिम जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारी जानकारी चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, आज के समय में बच्चे और युवा इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन वे कई बार सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि गेमिंग एप्स की जानकारी नहीं रखते, अजनबी लोगों से ऑनलाइन बातचीत करने में सावधान नहीं रहते, माता पिता को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी नहीं देते। साथ ही श्रोता साथियों, सरकार और बड़ी कंपनियां भी डाटा सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाए जा रहे हैं, बैंक और कंपनियां सुरक्षा सिस्टम मजबूत कर रही हैं, साइबर क्राइम सेल लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। श्रोता साथियों, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम खुद सावधान नहीं रहेंगे तो खतरा बना रहेगा।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, आपने सही कहा, और ऐसे में डिजिटल जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अगर हम जागरूक हैं जागृति जी, तो हम सुरक्षित हैं, और वहीं अगर हम लापरवाह हैं तो हम खतरे में हैं।
0: बिल्कुल,
2: ऐसे में दोस्तों जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से आज जान पाए हैं कि कैसे हमारी जानकारियां चोरी हो जाती है, और ऐसे में हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी सुरक्षा है दोस्तों। इसलिए डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
2: अगर हम सतर्क न रहे श्रोता साथियों तो हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं।
0: जी हाँ।
2: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जानकारी आपकी पहचान है, और आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल,
2: इसे श्रोता साथियों किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखें।
1: जी हाँ।
2: सोच समझकर लिंक पर क्लिक करें, सावधानी से शेयरिंग करें और समझदारी से डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कानून और हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होता है श्रोताओं, तो वो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कर सकता है।
1: हाँ।
0: कहा गया है कि कानून जागरूक है, अब नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोताओं आज का युग डिजिटल युग है, जैसा कि हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी ही हमारी असली पहचान बन चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: सुविधा के साथ खतरे भी बढ़े हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी और जागरूकता से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि डिजिटल दुनिया में कदम सोच समझ कर बढ़ाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी पूरी पहचान को खतरे में डाल सकती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हमारी जानकारी बहुत कीमती हो गई है। अगर श्रोता साथियों ये गलत हाथ में चली जाए तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क रहें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि सुरक्षा सिर्फ सरकार कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी भी है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सावधानी ही सुरक्षा है। अगर हम जागरूक और सतर्क रहेंगे तो हमारी जानकारी सुरक्षित रहेगी और हम डिजिटल दुनिया का सुरक्षित तरीके से आनंद ले सकेंगे।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और यहाँ पर हमारे श्रोता साथियों से एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी कहना चाहेंगे, हम देखते हैं जागृति जी कि कई लोग टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ते नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: जो कि सबसे बड़ी अनदेखी है।
1: बिल्कुल,
2: हम सब क्या करते हैं दोस्तों कि आई अग्री पर क्लिक कर देते हैं और बिना पढ़े।
0: जी हाँ।
2: लेकिन उसे में लिखा होता है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, किसके साथ आप उसे शेयर कर रहे हैं, यानी हम खुद ही अपनी जानकारी देने की अनुमति ऐसे में दे देते हैं जागृति जी।
1: जी हाँ।
2: तो हमें करना क्या है दोस्तों कि जब भी टर्म्स और कंडीशंस आते हैं किसी ऐप पर, तो हमें उन्हें सबसे पहले पढ़ लेना है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ।
2: हम कह सकते हैं कि दोस्तों इनसाइडर थ्रेट जो होता है वो खतरा अपने ही लोगों से हमें होता है।
0: जी हाँ।
2: हर बार हैकर बाहर का हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी ऑफिस का कर्मचारी, किसी संस्था का स्टाफ या फिर अंदर के लोग भी डेटा लीक कर सकते हैं दोस्तों।
0: जी हाँ।
2: इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचे, टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ें और साथ ही आई अग्री पर तो श्रोता साथियों सोच समझ कर ही क्लिक करें।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: तक। साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ।
2: कशिश और रीना, आज हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में पानी पीने की आदत कैसे डालें।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि पानी जीवन का आधार है।
0: जी,
2: जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है वैसे ही पानी शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि विशेष रूप से बच्चों के लिए पानी का पर्याप्त सेवन बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि उनका शरीर विकास की अवस्था में होता है। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कशिश कि बच्चे पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक, जूस और अलग अलग जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों में पानी पीने की अच्छी आदत डालना माता पिता और समाज दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले हम इस गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
2: तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है
1: जी,
0: कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि पानी का महत्व बच्चों के लिए बहुत अधिक होता है अंजलि जी।
1: जी,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के शरीर का लगभग कई प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है साथियों
1: जी,
0: और पाचन को सुधारता है
1: जी,
0: जिससे विषैले पदार्थों को बाहर निकालना आसान हो जाता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है यह। हम देख सकते हैं कि पानी की कमी से बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें पानी पीने के महत्व के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास में यह हमारी सहायता करता है। पानी शरीर के अंगों के सही विकास में मदद करता है हमारी। यह मांसपेशियां और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। जैसे कि पानी भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर ये हम जाने कि पानी दिमाग विकास में हमारी सहायता करता है, अंजलि जी हम कह सकते हैं कि पानी की कमी से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां आती है, पर्याप्त पानी पीने से बच्चों की एकाग्रता भी इससे बढ़ती है।
2: बिल्कुल, हम देखते हैं रीना, बच्चों में पानी पीने की आदत क्यों नहीं बन पाती है, अगर इस बात को जाने तो कहते हैं स्वाद की कमी
1: जी।
2: पानी का कोई खास स्वाद नहीं होता, इसलिए बच्चे इसे कम पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बहुत सी बार मीठे पेय पदार्थों की ओर आकर्षण यानी कि कोल्ड ड्रिंक और पैकेट जूस बच्चों को अधिक लुभाते हैं
0: जी। हाँ,
2: अगर शुरू से ही आदत नहीं डाली जाती है तो बच्चे पानी पीने से बचते हैं। श्रोता साथियों, यदि घर के बड़े खुद पानी कम पीते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बताएंगे कशिश श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद उदाहरण बनना है
1: जी।
2: बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। यदि श्रोता साथियों आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे इसे अपनाएगा।
0: बिल्कुल,
2: साधारण पानी बच्चों को बोरिंग लग सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे कि नींबू पानी, पुदीना या खीरा डालकर उसका फ्लेवर बदल दें। रंग बिरंगी बोतल में पानी पीने को बच्चों को हम दे सकते हैं
0: जी।
2: और भी कशिश कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम बच्चों के अंदर पानी पीने की आदत विकसित कर सकते हैं, तो वो बातें आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें बच्चों की बोतल को रोचक बनाना है, जैसे कि हम उन्हें पानी पीने के लिए अलग अलग तरह की बोतल दे सकते हैं साथियों, जिस पर कार्टून बने हुए हो, जिससे हम देखेंगे कि बच्चे अच्छी तरीके से पानी भी पी पाएंगे क्योंकि वो बोतल उन्हें आकर्षक लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आप दोस्तों उन्हें साधारण पानी न देकर पानी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप नियमित समय भी तय करें, जैसे कि बच्चों को समय समय पर पानी पीने की आदत आप डलवाएं, जैसे कि सुबह उठते ही उन्हें पानी दें, खेलने के बाद पानी दें, और खाना खाने से पहले और बाद में भी पानी पीने के लिए कहें।
1: बिल्कुल,
0: इससे अंजलि जी बच्चों की एक नियमित आदत बन जाएगी पानी पीने की।
1: जी बिल्कुल,
0: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बता ही रहे हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं
1: जी,
0: तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम में होंगी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी आगे की बातचीत की ओर। अंजलि जी, यहीं अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए सही मात्रा में पानी क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की उम्र के गतिविधि के अनुसार हमें बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। जैसे कि 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 5 या 7 गिलास हमें पानी देना चाहिए, 9 से 13 वर्ष के लिए हमें 7 से 9 गिलास पानी देना चाहिए। अगर यही हम जाने कशिश की पानी की कमी के दुष्परिणाम के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि थकान और कमजोरी, सिर दर्द, कब्ज, ध्यान में कमी, ये सब पानी की दुष्परिणाम हो सकते हैं। यही अंजलि जी, हम जाने कि माता पिता और शिक्षक की भूमिका के बारे में, तो माता पिता को घर में पानी पीने का वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों को बार बार याद दिलाना चाहिए, मीठे पेय पदार्थ की मात्रा हमें कम रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों को मजबूरी में नहीं बल्कि खेल खेल में पानी पीने की आदत डालें। जैसे कि हर घंटे 1 गिलास पानी का खेल, स्टिकर या इनाम देकर प्रोत्साहित करें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चे स्कूल में अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी बोतल दें और बार बार याद दिलाएं कि वे पानी जरूर पिए। बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों में पानी पीने की आदत डालना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि हम बच्चों को बचपन से ही पानी पीने का महत्व सिखा दे कशिश, तो वे जीवन भर स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इसलिए हमें बच्चों में ये आदत विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ और सशक्त बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कशिश के बच्चे जो हैं वो खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और ये जो आदत है वो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को चाहिए कि वो इस आदत को खुद भी अपनाए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में पानी पीने की आदत विकसित करना केवल एक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि साथियों ये एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव रखने जैसा है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि जब बच्चा सही मात्रा में पानी पीना सीख जाता है, तो साथियों वो अपने शरीर की जरूरतों को समझने लगता है, और साथ ही धीरे धीरे आत्म देखभाल यानी कि सेल्फ केयर की ओर भी बढ़ता है।
1: जी
2: दोस्तों, ये आदत जो है वो उसे भविष्य में भी कई बीमारियों से बचाती है, और उसके एकाग्रता और ऊर्जा के साथ साथ खुशहाली को भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल
2: अंजलि जी और रीना, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, बदलती जीवन शैली में, जहाँ कृत्रिम पेय पदार्थ जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं,

0: वहाँ पानी जैसी सरल चीज को महत्व देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: यदि परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे तो ये छोटी सी आदत एक बड़े सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल
0: जी, इसलिए ये कहना जरूरी है कि हम बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि पानी पीना एक नियम है, बल्कि उन्हें ये बताएं कि पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है और अपनी सेहत से प्यार करने का एक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखेंगे कि जब बच्चे इस सोच को अपने मन में बिठा लेंगे तब पानी पीना उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।
2: जी बिल्कुल कशिश जी, आपने सही कहा। अगर ये हम बात करें कि आधुनिक समय की चुनौतियों के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्यास का एहसास भी नहीं होता।
0: बिल्कुल,
2: इसके अलावा पानी पीना एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है जिसे बचपन से ही विकसित करना आवश्यक होता है। यदि हम बच्चों को सही तरीके से प्रेरित करें, उन्हें उदाहरण दे और पानी को उनके जीवन का हिस्सा बना दे साथियों, तो वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य ही देश का भविष्य है दोस्तों, और इसे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए पानी जैसी छोटी छोटी आदतों का बड़ा योगदान भी होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों हमारी आपसे ढेर सारी रही, हमने जाना कि हम बच्चों में पानी पीने की आदत को कैसे विकसित कर सकते हैं, साथ ही उनके जीवन में पानी का क्या महत्व है, ऐसे ही हमारी ढेर सारी बातें रही अंजलि जी।
1: जी,
0: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में।
1: जी,
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
2: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को।
1: नमस्कार।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक के आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नू दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा वारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करा हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरती बहुउद्देशीय कृषि वानिकी नो एक समाधान थई शके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि आदिवासी संस्कृति जो है वो किस तरीके से वनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि वनों के संरक्षण को लेकर हर कोई प्रयास कर रहा है, और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से, हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है। तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है, उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं। वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है, उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं। पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है।
0: बिल्कुल।
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें, और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यही सर, अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल, तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं। यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है, और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों।
0: जी जी।
1: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं। पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थितिकी की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं, उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं, उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी,
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है, जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है, स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती
0: है। जी,
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से, या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
0: जी जी।
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं, और किस तरीके से ये चीजें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियां हम देखते हैं, उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं, जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति, हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है। क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता।
0: जी जी।
1: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
0: जी जी।
1: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी जी।
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी जी।
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડતા કહ હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાઈક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
4: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
3: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने

0: में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है फोन पर बात करने के शिष्टाचार को लेकर। आज का युग संचार का युग है। मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां एक संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे अंजलि, वहीं आज कुछ सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। फोन पर बातचीत करना सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व, संस्कार और व्यवहार का भी आईना होता है। इसलिए फोन पर बात करते समय शिष्टाचार का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं फोन पर बात करने के क्या शिष्टाचार होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया अंजलि कि फोन पर बात हो सभ्य और सरल, तभी हमारा व्यक्तित्व सफल बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई बार फोन का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वह बातचीत के लिए हो, काम के लिए हो, या जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन श्रोता साथियों, इस तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वह है फोन पे बात करने की शिष्टाचार।
0: जी हाँ,
1: शिष्टाचार का अर्थ है श्रोता साथियों विनम्रता, सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार करना। जैसा हम आमने सामने बातचीत में शालीनता रखते हैं, वैसे ही फोन पर भी सही तरीके से बात करना उतना ही जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: फोन पर हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है, इसलिए हमारा व्यवहार और बोलने का तरीका हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि फोन पर बातचीत करते समय उचित भाषा सही लेजा और सामने वाले के प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें यह ध्यान रखना शामिल होता है कि हम कैसे बात शुरू करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे अपनी बात रखते हैं। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह हमारे संस्कार और सामाजिक समझ का हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: एक अच्छा व्यवहार न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाता है श्रोता साथियों, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि फोन पर बातचीत में सामने वाला व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, इसलिए हमारी आवाज, भाषा और बोलने का तरीका ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम सही तरीके से बात करते हैं तो सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वहीं अगर गलत तरीके से बात करने पर हमारी छवि खराब हो सकती है। श्रोताओं, आज के समय में फोन का उपयोग केवल निजी बातचीत के लिए नहीं है बल्कि व्यापार, शिक्षा और आधिकारिक कार्यों के लिए भी किया जाता है।
1: जी,
0: ऐसे में फोन पर शिष्टाचार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फोन उठाते समय सबसे पहले अभिवादन करना होगा, जैसे कि नमस्ते, हेलो, सुप्रभात हम बोल सकते हैं, हमें जो भी अच्छा लगे हम बोल सकते हैं।
1: जी जी,
0: इसके बाद हम अपना परिचय देना चाहे ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ सके कि हम कौन बात कर रहे हैं। यदि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले पूछे कि क्या वो व्यक्ति बात करने के लिए उपलब्ध है या नहीं। ये छोटी सी बात सामने वाले के प्रति सम्मान दर्शाती है अंजलि।
1: बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, हमें सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में नहीं काटना चाहिए। इसी के साथ श्रोता साथियों, हमें धीरे और स्पष्ट आवाज में बात करनी चाहिए। यदि आप व्यस्त हैं तो विनम्रता से बाद में बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसी के साथ हमें फोन पर गुस्से या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, और बिना परिचय दिए सीधे बात करना अशिष्टता कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: बार बार कॉल करना, लगातार मिस्ड कॉल देना गलत है। इसी के साथ जागृति जी, हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरों को असुविधा होती है। अपशब्दों का प्रयोग या कटु भाषा भी बोलने से हमें बचना है, क्योंकि श्रोता साथियों, जब हम फोन पर विनम्रता से बात करते हैं तो सामने वाले पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। खासकर कार्यस्थल पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ हमारी पहचान, हमारी आवाज और हमारा व्यवहार जो है उससे ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि फोन पर बात करते समय अपनी आवाज को संतुलित और स्पष्ट रखना होता है। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में बात करना ठीक नहीं होता है श्रोताओं। साथ ही शब्दों का चयन भी हमें बहुत अच्छे से करना होता है। बातचीत के दौरान बीच में टोकना, चिल्लाना या गुस्सा करना गलत शिष्टाचार है।
1: बिल्कुल,
0: हमेशा धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात सुने और फिर अपनी बात को रखें। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फोन पर बात करने के शिष्टाचार को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हमारी ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से फोन पर बात करते समय हमें शिष्टाचार को बनाए रखना है। श्रोता साथियों, सामाजिक और व्यवसायिक सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन पर अच्छा व्यवहार हमें सामाजिक और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक विनम्र व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। कहना चाहेंगे जागृति जी हमारे श्रोता साथियों से कि सामाजिक जीवन में फोन शिष्टाचार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब लोग किसी कार्यक्रम में कॉल करते हैं या आपसे संवाद करते हैं तो शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी होता है। यह न केवल कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: जब एक व्यक्ति शिष्टाचार अपनाता है श्रोता साथियों, तो वह दूसरों को प्रेरित भी करता है, जिससे पूरे समुदाय में अच्छे व्यवहार की संस्कृति विकसित होती है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, फोन करने का समय बहुत जरूरी होता है। बहुत सुबह या देर रात में कॉल करना अनुचित माना जाता है, जब तक कि कोई आपात स्थिति ना हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मीटिंग में है या व्यस्त है तो बार बार कॉल करना गलत आदत है। ऐसे में मैसेज छोड़ देना बेहतर होता है। बस, ट्रेन, अस्पताल, विद्यालय, किसी भी सभा में फोन पर जोर जोर से बातचीत करना अशिष्टता मानी जाती है। ऐसे स्थानों पर फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखना चाहिए। श्रोताओं, यदि बहुत जरूरी कॉल हो तो धीरे और संक्षिप्त में बात करनी चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। अगर गलती से किसी को गलत नंबर मिल जाए तो विनम्रता से क्षमा करें, कहकर कॉल समाप्त कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह यदि कोई हमें गलत नंबर से कॉल करता है तो उसे

0: भी शालीनता से जवाब देना होगा। बात खत्म होने पर अचानक फोन काट देना गलत है। बातचीत समाप्त करते समय धन्यवाद, ठीक है, फिर बात करेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग आप जरूर करें, इससे बातचीत का अंत भी सकारात्मक और सभ्य बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं वो जल्दबाजी में और तनाव के कारण फोन पर सही व्यवहार करना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गुस्सा, अधीरता और असंयमित भाषा के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है। श्रोता साथियों, इस समस्या का समाधान है स्वयं में सुधार और जागरूकता। हमें ये समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम थोड़ी सी सावधानी और धैर्य रखें तो हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समझना आवश्यक है श्रोता साथियों कि फोन पर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का भी संचार है। हमारी आवाज में छिपा व्यवहार सामने वाले के मन में हमारी छवि बनाता है। या तो वह हमें एक समझदार, विनम्र और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखेगा या फिर असंवेदनशील और असभ्य के रूप में।
0: बिल्कुल,
1: आज जब तकनीकी ने दूरियों को कम कर दिया है तब शिष्टाचार ही वह माध्यम है जो दिलों की दूरी को कम कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: फोन पर सही तरीके से बात करना कोई कठिन काम नहीं है बल्कि एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह फोन पर बातचीत करते समय संयम, सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखेगा तो न केवल व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे बल्कि समाज में भी सकारात्मक और आपसी समझ बढ़ेगी।
0: जी हाँ,
1: आवश्यकता है कि हम तकनीक का उपयोग करते समय अपने संस्कारों को न भूलें, क्योंकि सही व्यवहार ही सच्ची प्रगति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आज के युवा और बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। उन्हें बचपन से ही फोन पर सही तरीके से बात करना सिखाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: उन्हें समझाना चाहिए कि फोन पर गाली गलौज, मजाक उड़ाना या गलत भाषा का प्रयोग करना गलत है। इससे न केवल उनका व्यक्तित्व खराब होता है बल्कि रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। श्रोताओं, कार्यालय, व्यवसाय से जुड़े कॉल्स में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ भाषा और व्यवहार दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: जी जी,
0: हमेशा औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट जानकारी दें और अनावश्यक बातें करने से बचें। इससे आपका प्रोफेशनल इमेज मजबूत होता है। हम कह सकते हैं कि फोन केवल एक साधन है लेकिन उसका सही उपयोग हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अंजलि, फोन पर बात करने का शिष्टाचार हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। श्रोताओं, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जैसे सही समय पर कॉल करना, विनम्र भाषा का उपयोग करना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना तो हम न केवल अच्छे संस्कार बन सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक छवि भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत है कि हम तकनीक के साथ साथ अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छी बातचीत ही अच्छे रिश्तों की नींव होती है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि फोन पर शिष्टाचार अपनाएंगे तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, बोलचाल में विनम्रता लाएंगे तो जीवन को भी सफल बना सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि असल मायने में फोन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि हम केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं रहें बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझें।
0: बिल्कुल,
1: यह एक ऐसी कला है जिसमें सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। जब हम धैर्य के साथ किसी की बात सुनते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं तो हम अनजाने में ही रिश्तों को मजबूत बना रहे होते हैं। यह भी समझना जरूरी है श्रोता साथियों कि तकनीक जितनी तेज हो रही है उतना ही जरूरी है कि हमारा व्यवहार संतुलन और संवेदनशीलता भी बनी रहे।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम जल्दबाजी, गुस्से और कह सकते हैं कि लापरवाही में बात करेंगे तो यह न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करेगा बल्कि हमारी छवि को भी कमजोर करेगा। इसके विपरीत यदि हम थोड़ी सी जागरूकता और संयम अपनाएं तो हम हर बातचीत को सकारात्मक और प्रभावी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि फोन पर हमारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान होती है। एक नमस्ते किसी का दिन बना सकता है, एक धन्यवाद रिश्तों में मिठास घोल सकता है और एक विनम्र बातचीत दिलों के बीच दूरी कम कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी सभ्य आदतें ही जीवन को महान बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: फोन पर हमारा हर शब्द, हर लहजा और हर व्यवहार ये तय करता है कि लोग हमें किस नजर से देखते हैं। इसलिए अगली बार जब भी हम फोन उठाएं तो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उठाएं।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अंजलि बोन गीत तो आयशु पुरु नणस गीत हाथे पड़ा सूटा उम्मीद कर जे वाते रही कार्यक्रम घूमर में ई आपी बोना ने कमी होगा बोने आपने हमारो आजनो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली शको आपरे अणा पता माते
1: होवे बोने लखी लो मारो पतु हमारो पतु है कार्यक्रम घूमर वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 3270001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते અમારો ફોન નંબર હે 9460051234
0: તો બોને ફેરી મલંગા અણસ કાર્યક્રમ મે એક ના વિષય ને હાથે તાર ઉદી
1: રામ રામ રામ રામ

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती। तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी मानो दूधस पिएगा।

0: अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि परशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हर हमेशा जब भी हम कार्यक्रम में हाजिर होते हैं तो हमारे साथ में एक नया विषय जुड़ता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हमारे बीच में एक अलग ही विषय जुड़ने जा रहा है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब खेत को समझते हैं। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वह मेहनत, उम्मीद, धैर्य और भविष्य का नाम है। खेत में जो बोया जाता है वही किसी दिन उग कर लौटता है। अगर बीज अच्छा है, देखभाल ठीक है, समय पर पानी है तो फसल भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर लापरवाही हो, खरपतवार बढ़ जाए या मिट्टी कमजोर हो जाए तो मेहनत के बावजूद परिणाम वैसा नहीं आता। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम उसमें क्या बो रहे होते? क्या हम विश्वास बो रहे होते या शक? क्या हम प्रेम बो रहे हैं या कटुता? क्या हम धैर्य बो रहे हैं या जल्दबाजी? क्या हम सीख बो रहे हैं या सिर्फ शिकायतें? यही सवाल आज की चर्चा का केंद्र है। जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारे सवालों के जवाब को। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप अवश्य बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है कि अगर जिंदगी भी एक खेत होती तो हम क्या बोल रहे होते। जी हाँ दोस्तों, हर खेत की शुरुआत जमीन से होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो साधारण बीज भी अच्छा फल दे सकता है। अगर मिट्टी कमजोर है तो उत्तम बीज भी संघर्ष करेगा। और जिंदगी भी मिट्टी की तरह ही होती है। और जिंदगी में वह मिट्टी क्या है? वह है हमारी सोच। जी हाँ दोस्तों, अगर सोच में सकारात्मक सीखने की इच्छा है और खुलापन है तो जीवन की फसल मजबूत होगी। लेकिन अगर सोच डर, तुलना और नकारात्मकता से भरी हुई है तो विश्वास रुक जाता है। जैसी सोच की मिट्टी, वैसे जीवन की फसल। अब बात आती है बीज की। तो हमारे जीवन में बीज है हमारे विचार और आदतें। जैसा कि दोस्तों, खेत में बीज छोटा होता है पर भविष्य बड़ा बनाता है, उसी तरह जीवन में छोटी आदतें और छोटे विचार बड़े परिणाम दे सकते हैं। अगर हम रोज सम्मान बोते हैं, ईमानदारी बोते हैं, अनुशासन बोते हैं, दया बोते हैं, तो एक दिन यही चरित्र की फसल बनते हैं। लेकिन साथियों, यकीन मानिए, हम टालमटोल, गुस्सा, तुलना, लालच बो रहे हैं तो उसी की फसल भी लौटेगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि जीवन हमें क्या दे रहा है, प्रश्न यह है कि हम जीवन में क्या बो रहे हैं। बीज बोकर श्रोता साथियों, किसान बैठ नहीं जाता, उसे पानी देना पड़ता है। और जीवन में पानी क्या है? निरंतर प्रयास। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास ही सपनों को जिंदा रखता है। जैसे कि खेत में एक दिन पानी देकर महीनों फसल नहीं उगती, वैसे ही जीवन में एक दिन मेहनत करके बड़े परिणाम नहीं मिलते। कहना चाहूंगी कि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी की फसल को रोज थोड़ी मेहनत का पानी चाहिए। जी हाँ साथियों, हम अक्सर धूप से बचना चाहते हैं, पर किसान जानता है कि धूप के बिना फसल कमजोर रह जाएगी। और हमारे जीवन में धूप है हमारी कठिनाइयाँ। जी हाँ, समस्याएं सिर्फ हमें रोकती नहीं है, हमें पकाती भी है। वे हमें मजबूत बनाती है और जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उनसे लड़ना सिखाती है। अक्सर हम हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हमेशा हम हमारी जिंदगी से साथियों शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी है वैसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन हमने किसी परेशानी का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि हमारा जो जीवन है ना, उसमें कठिनाइयाँ, संघर्ष, उतार चढ़ाव सब कुछ आते जाते रहेगा। और हम समाज में जीते हैं, समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, तो उसमें बहुत सी बार हमारी आलोचना होना या सम्मान मिलना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन सारी चीजों को हम कैसे लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी फसल होती तो हम इसे कैसे बोते, ये बात जो है वो हमारे जीवन की रूपरेखा को ही बदल कर रख देती है। ये बातें निरंतर कार्यक्रम में आगे मैं आपसे और भी ऐसे ही करती रहूंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें खरपतवार की। तो जैसा कि खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उगता है, अगर समय पर नहीं निकाला जाए तो वही पोषण खा जाती है। और हमारी जिंदगी में खरपतवार क्या है साथियों, ये मैं आपको बताऊं तो बेवजह की चिंता करना, दूसरों से तुलना करना, मन की कड़वाहट, पुरानी नाराजगी को हमेशा अपने अंदर रखना, नकारात्मक संगति, अगर इन्हें हमने नहीं हटाया तो ये हमारी ऊर्जा खा जाएगी। इसलिए सिर्फ अच्छा बोना काफी नहीं है, बुरी चीजों को हटाना भी हमारे लिए जरूरी है। और जिस तरीके से खेत में पोषण चाहिए होता है तो जीवन में भी पोषण बहुत जरूरी है। और वह पोषण क्या है, तो वो पोषण है हमारा अनुभव, हमारी सीख, बड़ों की सलाह। कई बार असफलता भी खाद बनती है, जो गिरकर सीखा वही आगे मजबूत खड़ा हुआ है। किसी ने कहा है कि कई हारे फसल खराब नहीं करती, मिट्टी बेहतर बनाती है। हर मौसम खेती के अनुकूल नहीं होता, कभी सूखा, कभी बरसात, कभी पाला। जीवन में भी श्रोता साथियों, हर समस्या एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी कठिन दिन आते हैं। समझदारी इसी में है कि हर मौसम में अच्छा बने रहो। समझदारी यह है कि हर मौसम में हमें कैसे टिके रहना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। श्रोता साथियों, आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो धैर्य भी रखता है। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं खोजता, उसे पता है कि इन सारी चीजों में समय लगेगा। लेकिन जीवन में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज मेहनत कल सफलता, यह हमेशा संभव नहीं है दोस्तों। धैर्य वह गुण है जो खेती भी बचाता है और जीवन भी। जो धैर्य बोता है वह स्थायी फल काटता है। खेत अक्सर अकेले नहीं संभलता, परिवार, पड़ोसी, समुदाय, सबकी भूमिका होती है। और जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते सांझा खेती है। अगर हम भरोसा बोए, संवाद बोए, सहयोग बोए तो रिश्ते फलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इन सारी चीजों को लेकर हमेशा अलग ही चीज करेंगे, जैसे कि भरोसा तोड़ेंगे, किसी का संवाद नहीं बनाकर रखेंगे, किसी को सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो सांझा खेती न बनकर अकेलेपन में रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा वो बोना है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। हम क्या बो रहे हैं इसका आत्म मंथन हमें अवश्य करना है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर जिंदगी खेत है तो हम क्या बो रहे हैं? क्या हम जल्दबाजी बो रहे हैं, तनाव बो रहे हैं, शिकायत बो रहे हैं, या उम्मीद, संयम, करुणा, सीख और प्रेम बो रहे हैं? क्योंकि जो बोया जाएगा वही लौटेगा। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी एक खेत है तो हम सब किसान हैं। हमारे विचार बीज हैं, हमारी आदतें खेती हैं, हमारे कर्म पानी हैं, हमारा धैर्य मौसम झेलने की ताकत है। और जो फसल हम कल काटेंगे वो आज की बुआई पर निर्भर करती है। इसलिए अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो अच्छे बीज बोने होंगे। अगर जीवन में हमें श्रोता साथियों शांति चाहिए तो भीतर विश्वास बोना होगा। अगर बेहतर समाज चाहिए तो व्यवहार में सहयोग बोना होगा। जी हाँ श्रोता साथियों, क्योंकि जिंदगी की मिट्टी खाली नहीं रहती, कुछ न कुछ तो उगता ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। बीज छोटा होता है, असर बड़ा। आज का एक अच्छा विचार श्रोता साथियों कल की पूरी फसल बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि हर इंसान अपने मन में रोज कुछ न कुछ बोता है। कोई उम्मीद बोता है तो कोई शिकायत। जो व्यक्ति हर कठिनाई में संभावना देखता है वह उम्मीद बो रहा है। जो हर परिस्थिति में सिर्फ कमी देखता है वह हताश बो रहा है। और दोनों की फसल अलग होती है। इसलिए अगर जिंदगी एक खेत है तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। क्योंकि जीवन अपने आप नहीं खिलता, उसे विचारों, कर्मों, रिश्तों और धैर्य से उगाना पड़ता है। अगर हम भीतर सच्चे बीज बोएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए बाहर अच्छी फसल जरूर आएगी। उम्मीद बोएंगे तो साहस उगेगा, विश्वास बोएंगे तो रिश्ते उगेंगे, और धैर्य बोएंगे तो सफलता उगेगी, और सेवा बोएंगे तो समाज खिलेगा। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी का खेत खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ उगता ही है। इसलिए समझदारी इसी में ही है कि हम उसमें वही बोएं जिसे कल गर्व से काट सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की हमारी जो बातचीत है कि अगर जिंदगी एक खेत है तो हम उसमें क्या बो रहे हैं, कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति इसी अनुमति के साथ। नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंगर अपनावे जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
2: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे
1: आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था गा।
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।